प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
2: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ मुख्य खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के बुलेटिन में। कैबिनेट ने फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों के माध्यम से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स, वित्तीय और आर्थिक कदमों को लागू करने के लिए कुल तिरासी कानूनों में सुधार लाया जाएगा। कैबिनेट ने जानकारी दी कि हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर पीवी सिस्टम लगाने की लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपए का ग्रांट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 227 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने संस्कृत स्पीकिंग यूनियन की नई कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन की जानकारी दी और गिरीश प्रसाद को परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए अच्छी खबर। मॉरिशस से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर नया अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आगुआ के तहत शुल्क मुक्त सुविधा जारी रहने से लगभग 8 बिलियन रुपए के अमेरिकी बाजार तक मॉरिशस की पहुंच बनी रहेगी। मॉरिशस में पानी की स्थिति अब भी चिंता का विषय। कम वर्षा के कारण जलाशयों और भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। फिलहाल ऊंचे इलाकों पर पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन यदि सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मॉरिशस में समुद्र में डूबने की घटनाएं अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। नेशनल कोस्ट गार्ड के अनुसार इस वर्ष अब तक 24 लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। विश्व डूबने से बचाव दिवस के अवसर पर लोगों से समुद्र में जाने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। विदेश स्तर पर स्पेन की राजधानी माड्रिड के पास लगी भीषण जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। 3 अलग अलग आग एक साथ मिलकर बड़े जंगल की आग में बदल गई है, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है। और अब चली जानती है मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है और उत्तर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज दिन के दौरान मुख्य रूप से देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। शाम को केवल सेंट्रल प्लाटू और दक्षिण में रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 17 से 19, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:43 पर और सूर्यास्त 5:50 पर होगा।
3: Center 95.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला कयामत के रोज उसका ऐब छुपाएगा। बहवाला अबू दाऊद। सही बुखारी की रिवायत है बेवाओं और मिस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है या रात भर इबादत और दिन को रोजे रखने वाले के बराबर है।

हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर फरमाते हैं, जब कोई मोमिन बीमार हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी उसके लिए रहमत है जो गुनाहों से उसको पाक करती है। तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान, औलाद और माल में आजमाइशें आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो मरने के वक्त अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होता। और सही बुखारी की रिवायत है, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसे होने लगी हो, मौत की तमन्ना न करे। अगर मौत की तमन्ना ज़रूरी हो जाए तो ये कहे, ऐ अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा।

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, इस संसार में आए हैं तो कर्मों का निर्वाह करना ही पड़ेगा, पर कर

जुड़े हों, अंधकार के गर्त में गिरकर हमारे मन में अपराध बोध की वृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मन शांति के लिए छटपटा रहा है। यही वह क्षण है जहाँ प्रभु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। श्रेष्ठतम यही है कि हम सदैव प्रभु की आराधना करते

श्रोताओं, जीवन में संघर्ष चलता रहता है, तभी तो हमारे मन में जिजीविषा जीवित है कि संघर्ष करते हुए जिएं और सच्चाई का साथ न छोड़ें। इसके साथ ही अपनी मानसिकता की शुद्धता को हम बनाए रखें, क्योंकि प्रभु भी उसी का साथ देगा जिसके अंदर सच्चाई व निश्चलता हो।

श्रोताओं, भक्त अपने आराध्य के गुण कीर्तन से जन समाज को भी भक्ति रस में मग्न करते रहते हैं। अपने आराध्य की प्रतिष्ठा कर जन समाज में भक्ति का प्रचार करने वाले ऐसे भक्त ईश्वर की अनंत कृपा के पात्र बनते हैं।

श्रोताओ, सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, परंतु कष्ट आने पर व्यक्ति को अकेला ही भोगना पड़ता है। परंतु यह भी सच है कि भक्त जब भी कष्टों का सामना कर रहा हो, तब तक उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर अवश्य आते हैं।

श्रोताओं, भगवान का भक्त जीवन और मरण किसी में भी आसक्त ना होता हुआ समभाव में जीता है। वह विपदा की घड़ियों में भी मन को दावादोल नहीं होने देता। ऐसा संभव होता है क्योंकि भक्तों पर भगवान की असीम कृपा सदैव बनी रहती है।

0: श्रोताओं, आज हमारे पास सुख के सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, जीने के सारे अधिकार प्राप्त है, परंतु इन सब के बावजूद समाज में समस्याओं की कमी नहीं है। कर्तव्य के प्रति हमारी भावना में कमी आ गई है, मर्यादा का उल्लंघन होता जा रहा है और विनम्रता लुप्त हो रही है। इसलिए उचित यही है हमारे लिए कि ईश्वर की आराधना द्वारा हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं।
1: प्रभु

श्रोताओ, ईश्वर की कृपा हो तो संसार में परायपन का अनुभव नहीं होता, स्नेह सहयोग सद्भाव की कमी का अनुभव नहीं होता। अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

热烈爱过之后，总有些往事留在雨天。一起来听刀郎带来的雨中飘荡的回忆。

0: आइए अब के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आस्था। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कैबिनेट ने जानकारी ली है कि कोप 31 यानी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सम्मेलन नवंबर 2026 में तुर्की में होगा। मॉरिशस की भागीदारी की तैयारी के लिए अगस्त से सरकारी, निजी और नागरिक संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श शुरू किया जाएगा। कैबिनेट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की 73 सिफारिशों को लागू करने की प्रगति की जानकारी ली। इसके तहत 2026-2030 के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना तैयार की जा रही है। सिफारिशों के लिए 10 विषयगत उप समितियां भी गठित की जाएंगी। कैबिनेट ने सऊदी अरेबिया के साथ सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। इस समझौते के तहत दोनों देश संगीत, साहित्य, कला, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे सेक्टरों में सहयोग बढ़ाएंगे। कैबिनेट ने फ्रांस की संस्था अफेची के साथ एक समझौते को मंजूरी दी है, जिसके तहत मॉरिशस में एचआईवी एड्स और मलेरिया से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों के लिए तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने जानकारी ली कि मॉरिशस और मोनाको के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए न्यूयॉर्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। स्थानीय स्तर के अन्य खबरों में मॉरिशस में इजिप्ट के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कल क्यूपिप में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य और राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग पर

0: जोर दिया गया। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है। अगुआ के तहत अमेरिका ने मॉरिशन उत्पादों पर नए अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाए हैं। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि इस फैसले से देश के निर्यात सेक्टर को नई गति मिलेगी। मेगजा ने भी अगुआ फैसले का किया स्वागत। संगठन का कहना है कि टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहने से मॉरिशन सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। विदेश स्तर पर भारत में एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच छात्र समूह कॉकरोच जनता पार्टी से सीजेपी के नेताओं ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों पर चर्चा हुई। हालांकि सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक देश भर में शांतिपूर्ण दर्शन जारी रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार एग्जाम पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए नए कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। स्वामी दयानंद रोड कॉम्बे में 70 साल की 70 years old की देवदत्त नोयान की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान कॉम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्या मिनिस्ट्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एपास डिवो लिकाजेन क्यूपिप में 68 साल की 68 years old की सुनवंती माता दीन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बासौंत, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 3:30 बजे उनके बेटे गिरीश माता दीन के मकान क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। पासर लेन न्यूकोव में 82 साल के महमूद दुला मंदारी इंतकाल कर गए हैं। लोग उन्हें भाई दुल के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उन्हीं के मकान न्यूखोव से निकाल कर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुडे फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: शनिवार का दिन 25 जुलाई 2026 दिन के 12:05 हुए हैं।
3: सुहाना सफर।
4: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते और आदाब। अभी आप सब कनेक्टेड हैं और एम फ्री अर्थात रेडियो मनोरंजन के साथ, जहां आप सुन रहे हैं पुराने गीतों का जबरदस्त कार्यक्रम सुहाना सफर। ऑफ कोर्स आपकी सखी अनीता के साथ और हमारा और आपका साथ होगा अभी से लेकर 2 बजे तक। आशा है कि आप लोग जो हैं ठीक ठाक हैं और खुश भी हैं, क्योंकि बेशक आप लोगों के गाने होंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, संगीत का जादू एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो बिना किसी शब्द के सीधे दिल को छू लेती है, मन को शांत करती है और भावनाओं को जगाती है। और यह जो हमारी भावनाओं को बदलने, यादों को ताज़ा करने और इंसानों को आपस में जोड़ने का काम करता है संगीत। तो आइए एक ऐसी ही धुन आपके नाम हम करते हैं जो आपके मूड को बेहतर ज़रूर अवश्य बनाएगी। ऑफ कोर्स लता जी की आवाज़ से शुरुआत करते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, ऐसे गाने सुनकर दिमाग में एक अलग सी शांति छा जाती है। बॉलीवुड का यह सुनहरा युग आकर चला गया, जहां एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म ऑफ लव डिपिक्टेड था। और बेशक आप भी हमारे हम सफर बनकर सहयोग दीजिएगा ऑफ कोर्स 5052506200 पर आपके मैसेजेस एंड 40 and 402 8070 पर आपके फ़ोन कॉल्स। और इसी प्रकार हम एक और गाने की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ गाना जो है फिल्म महबूब की मेहंदी से लिया गया है, बहुत ही रोमांटिक गाना है। चलिए इसको भी सुनते हैं।

जी दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्यारा सा मैसेज आया है, बर्थडे विश है, और यहाँ पर युग दुखी का जन्मदिन है आज, और आप हो गए 3 साल के। सो एक प्यारी सी कविता भेजी है आपकी मामा पापा ने, और वे कहते हैं कि हंसते रहे आप हजारों के बीच में, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन रहो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। हैप्पी बर्थडे टू यू युग, ढेर सारी शुभकामनाएं मामा दीपशिका की ओर से। पापा योगेश हैं, भाई गौरव हैं, और भाई रुशल हैं, नाना नानी हैं, मौसियां हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे दुखी परिवार ट्रियोले की ओर से। ढेर सारा प्यार आपको, और आप जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुशियां आपके दामन में रहे। तो एक प्यारा सा गाना आपके नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता तो बहुत ही खास है और काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, हमारे साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो हैं नंदलाल जी वकवा से साथ दे रहे हैं और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म डॉक्टर विद्या का गाना। तो आइए मुकेश जी की आवाज़ में यहाँ गाना सुनते हैं। और जितने भी लोग मुकेश जी के फ़ैन हैं तो यह गाना आप लोगों के नाम।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों पिछली वेजे से गायत्री जी साथ है दे रही है और आपकी मांग है एक प्यारा सा गाना ऐ मेरे प्यारे वतन फिल्म से और यह गाना विशेषकर जाएगा आपके पूरे परिवार के नाम भाभी मीरा है बेटियां गिरीशा हैं मेधा हैं कठरबोन की बहन अमृता हैं उनकी बेटियां हैं नेहा शीति दिव्या बेटे सुधीर हैं कमलेश हैं बहू सुधा हैं सभी सुनने वालों के नाम हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए थैंक यू जी और हमारे टीम के लिए भी थैंक यू जिसके लिए और जिन लोगों को यह गाना पसंद है उनके नाम और ऑफकोर्स वंस अगेन मुकेश जी आ रहे हैं

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों 12:32 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर कार्यक्रम अनीता के साथ रेडियो मनोरंजन पर। और यहाँ पर दोस्तों हमने पुराने गीतों का समा बांध लिया है, आप भी इसमें जुड़ जाए और इस पल को जरूर खूबसूरत बनाइए। और ऑफ कोर्स नवीन जी मुताय ब्लॉश से साथ दे रहे हैं और आप तो हम बार बार कहते हैं कि आशा जी के फैन हैं। ऑफ कोर्स आपने आशा जी का गया हुआ गाना मांगा है, फिल्म है ईमानदार और इस दिल में क्या रखा है, चलिए इस गाने को हम गुनगुनाते हैं।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, वीकेंड का समा छाया हुआ है और ऑफ कोर्स वीकेंड में हम बहुत खुश होते हैं। बहुत ही अलग होता है वीकेंड में, हम खुश रहते हैं क्योंकि रिलैक्स रहते हैं, कहीं पर भाग दौड़ नहीं रहता है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मी टाइम होना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते पूरा का पूरा हम काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। और ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं अभी हॉलीडेज में हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो उतना जो है भागा दौड़ी नहीं होती है। और चलिए इस वीकेंड को ज़बरदस्त बनाते हैं आपके गानों के माध्यम से। और यहाँ पर जो है देवयानी जी रिश्मा फ्लक्स से साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म हिमालय की गोद में का गाना। तो चलिए, आज तो काफ़ी लोग जो है मुकेश जी के गाने मांग रहे हैं, तो चलिए चांद सी महबूबा, इसको भी हम सुनते हैं।

जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनीता जी फी कॉम्प्लेक्स से साथ दे रही है। और आप कहती है कि यहाँ आपके यहाँ जो है मौसम बहुत ही सुहाना है और शाम की तैयारी हो रही है क्योंकि आप जो है हल्दी में जाएंगी। और आप कहती है कि आपकी भतीजी आई हुई है विदेश से और उनका नाम है अंजू और उनकी एक बेटी है वालिना, तो उनके लिए खास कर उनके लिए आपने फिल्म हम साथ साथ हैं का गाना मांगा है और यही गाना जाएगा आपके पति राज के लिए, बेटे अंकुश, संतीश, बहू अश्रीमा, मनीषा, पोती हिमेशा, आधिया, पोते लड्डू गोपाल, सबके नाम यह गाना चलता है। तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम एंड हैव ए गुड वैकेशन, ए लवली एंड एन्जॉयबल वैकेशन हियर इन मॉरिशस।

जी दोस्तों, हम साथ है, साथ है हैं और खोखोप से श्यामा जी साथ दे रही हैं। और आपकी फरमाइश है फिल्म सावन का गाना, और यही गाना जाएगा आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता हैं, युधिष केशव देव्यू हैं, आपकी सहेलियां हैं वीना रामफल, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकलू।

जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और विदेश से, बेल्जियम से प्रकाशवती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप कहती हैं मौसम है सुहाना, इसलिए आप फिर पाकिजा का गाना सुनना चाह रही है, मौसम है आशिकाना। तो यह गाना आपके नाम, और इसी गाने के साथ हम भरेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: सुनते अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ गीता जी। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, मैं निष्मा, सभी को हमारा नमस्कार। अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर लगाई गई नई अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क से मॉरिशस के उत्पादों को स्थायी रूप से छूट मिल गई है। अगवा के तहत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच बरकरार रहने से मॉरिशस ने लगभग 8 बिलियन रुपए के रणनीतिक अमेरिकी बाजार को सुरक्षित रखा है। साथ ही अब उसे एशिया के बड़े कपड़ा उत्पादक देशों के मुकाबले महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बढ़त भी मिल गई है। ये उपलब्धि वाशिंगटन में कई महीनों तक चली गहन कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है। मॉरिशस में पानी की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। कम बारिश के कारण जलाशयों और भूमिगत जलाशयों का स्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल कुछ क्षेत्रों में पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन अगर सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए कई समाधान पर काम कर रही है। और विदेशी स्तर पर फ्रांस के बोर्डो के पास जंगलों में लगी भीषण आग के कारण लगभग 60,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस और स्पेन में जंगलों की आग से अब तक 2,20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान तेज़ी से जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद अब तक 38,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और उधर असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल भी राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। पहासल लेन न्यूग्रोव में 82 साल के 82 ईयर ओल्ड के जनाब मामूद डुला मंडारी, जो भाई डुल से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके घर पहासल लेन न्यूग्रोव से निकालकर रॉयल रोड रुजबेल की जमा मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। स्वामी दयानंद रोड खांबे में 70 साल के 70 ईयर ओल्ड के श्री देवदत्त नोयान, जो सुलिए से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर स्वामी दयानंद रोड खांबे से उठाकर तेमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टूटे एट 2 PM। एपास डेवो लिकाजन क्यूपिप में 68 साल की

0: 68-year-old की श्रीमती सुनवंती मतादीन पैदाइश नाम बसंत और जोशीला से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सफर बाद के 3:30 बजे उनके बेटे गिरेश मतादीन के घर एम्पास देवो लेकाजन क्यूपिप से उठाकर बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सुहाना सफर।
4: जी दोस्तों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है और अभी हो रहा है 1:04। ऑफकोर्स रेडियो मनोरंजन पर आप लोगों की पसंद के गाने हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा गाना आने वाला है और इस गाने की फरमाइश माला जी ने की है रिव्या जोरोंपो से, और फिल्म पिघलता आसमान का गाना कनील के लिए जाएगा। कविश सत्यम किरण केविन शिव और आपके लिए यहाँ गाना जाएगा। ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट गाना, एंड इसको गाया है किशोर कुमार जी और अलका याग्निक जी। इन जो है बहुत ही जवान में उसने यह गाना गाया अलका याग्निक जी। तो चलिए इसको सुनते हैं, इस डुअल को सुनते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जी दोस्तों, जय श्री जी, सूरीनाम से साथ दे रही है। और आपने काफ़ी देर पहले फ़ोन किया था, लेकिन जो गाना आप मांग रही हैं, फिल्म है यहाँ पर, उनके अन्य गाने हैं, लेकिन जो गाना आप मांग रही हैं वो नहीं है। लेकिन मैंने आपके लिए एक प्यारा सा गाना चुना है, फिल्म है उपहार। ऑफकोर्स यह गाना आपकी मामा इसवंती के लिए जो आएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको यह गाना अवश्य पसंद आएगा। तो चलिए, यह गाना आपके लिए और आपकी मामा के लिए, एंड हम कहेंगे कुराज आपको, क्योंकि आप एक जो है बहुत ही नोबल कार्य कर रहे हैं, अपनी मामा की सेवा कर रही हैं आप। तो चलिए, यह गाना आप दोनों के नाम।

जी दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उससे उसी के आगे सिर झुकाती है। और दोस्तों, यहाँ हमें एक प्यारा सा मैसेज आया है करुणा जी की ओर से। आप कहती हैं, नमस्ते जी। नमस्ते करुणा जी, आप सेबास्टोपोल से जुड़ी हुई हैं और आप कहती हैं, आई वेट ईगरली फॉर सैटरडे टू लिसन टू योर प्रोग्राम। थैंक यू जी इसके लिए। और आपकी फरमाइश है फिल्म दो रास्ते का गाना। और तो चलिए, यह गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम, लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 1:21 हुए हैं और यहाँ पर आपके मैसेजेस देखकर, आप लोगों से बातें करके तब एहसास होता है कि कितने लोगों को इस कार्यक्रम का इंतज़ार होता है, कितने लोगों को यह कार्यक्रम पसंद है। सो थैंक यू फॉर सो मच लव दोस्तों। और यहाँ पर बिंदु जी, बिंदु दुखित राम जी का वो आकाशिया से साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का गाना, और यही गाना जाएगा पति रमेश के लिए। बेटा विकी हैं, बहुषा हैं, बच्चे हैं ईशा, विकेश और पूरे दुखित राम परिवार के नाम यह गाना चलता है।

दोस्तों, कहा गया है कि जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है वो कभी भी कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाता है, ना ही परिवार में, ना ही समाज में और ना ही रिश्तेदारों में, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान हर किसी को छुपता है। झूठ बोलने वाला इंसान सबको पसंद होता है, क्योंकि झूठ सुनने में अच्छा लगता है, और सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। सच बोलने वाला इंसान जरूर अकेला पड़ जाता है, पर वो कभी गलत लोगों के साथ खड़ा नहीं होता। उसे भीड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा होता है। लोग सामने से हंसते हैं, पीछे से बातें करते हैं, लेकिन सच बोलने वाला इन सब से ऊपर उठ जाता है। वो दिखावे से दूर रहता है और खुद के साथ सच्चा रहता है। शायद इसलिए ऐसे लोग कम मिलते हैं, क्योंकि हर कोई सच का बोझ नहीं उठा सकता है। झूठ आसान है, पर सच के साथ जीना हिम्मत मांगता है। जो इंसान ये हिम्मत कर लेता है, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन वो खुद की नजरों में कभी नहीं गिरता है। जी दोस्तों, अगला गाना जो आएगा माधुरी जी के नाम, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। इश्क़

वेल दोस्तों, एस्पेरेंस ट्रेबुशे से मनोज सोहन जी कह रहे हैं कि वे जो हैं कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म दीवाना, पुरानी फिल्म दीवाना का गाना वन एंड ओनली ऑफ कोर्स आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, गाय सिंह आश्रम में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके नाम और अस्पताल में जितने भी बीमार लोग हैं उनके नाम यह गाना जाता है।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, काफी लोगों को लगा कि आज काफी मुकेश जी के गाने बज रहे हैं और यहाँ पर एक फैन हमने मैसेज भेजा है, यू आर मुकेश मोहन अवांग ये तवाकुआ, और आप कहती है कि आप भी मुकेश जी के फैन है एंड यू आर लाइकिंग आवर सिलेक्शन, थैंक यू, योर प्रोग्राम इज आउटस्टैंडिंग सुपर, थैंक यू जी, इन सभी गुड विशेज के लिए थैंक यू। और यहाँ पर जो है अनिता जी मोंडालबिया से हैं और आपने फिल्म बेटी बेटे का गाना अपने दोस्तों के नाम किया, करुणा है, अमृता है और सभी दोस्तों के नाम, चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की कर्णप्रिय आवाज़ों में यह गाना, बहुत ही खूबसूरत है, चलिए अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती।

थैंक यू फॉर योर आशीर्वाद मुकेश मोहन जी, और यही तो हमें चाहिए ना कि हम यहाँ आपके मनोरंजन करें और आप जो हैं खुश होकर हमें आशीर्वाद दें, थैंक यू इसके लिए। और अगला गाना जाएगा अंति जी के नाम, जो कुंफू खो से साथ दे रही है, फिल्म संजोग का गाना। और यही गाना जाएगा यहाँ पर, काफ़ी लोगों को लाइनें मिली हैं, बबू नंतवा कठरबोन से, शीला जी अफबुन में, फुलवंती जी वाकवा से, और खान गोप से विमला जी के नाम, और आशा जानू जी आप भी कोटेज से साथ दे रही है, लेकिन थोड़ी देर आपने कर दी मैसेज भेजने में, इसलिए अगला गाना आपके नाम जो है हम कर रहे हैं। और यही गाना जाएगा मामा कुमारी, नेफ्यूज़ हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज एंड ऑल जानू परिवार एंड लिसनर्स फ्रेंड्स, धीरज एंड प्रेमिला, रीना एंड फॉर यू, थैंक यू जी। तो आप सबके नाम अगला गाना।

वेल दोस्तों, कहा गया है कि साथ चलने के लिए साथी चाहिए, आंसू रोकने के लिए मुस्कान चाहिए, जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए और जिंदगी जीने के लिए आप चाहिए। थैंक यू फॉर सो मच लव आपने दिखाए हमारे लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। एंड अब चलने का समय आ गया है एंड अंतिम गाना जाएगा अब ऑफकोर्स हरीश जी जो हैं अनु के नाम कर रहे हैं अगला गाना, और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 2 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद अलका जी हाजिर हैं इतिहास के झरोखे कार्यक्रम को लेकर। आपने साथ दिया, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, एक नई मुलाकात होगी अगले सप्ताह। टेक केयर, और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Afternoon, want to check your time. It's already 2 PM. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता के साथ. आपको नमस्कार गीता जी.
2: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार. अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर लगाई गई नई अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क से मॉरिशस के उत्पादों को अस्थायी रूप से छूट मिल गई है. अगवा के तहत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच बरकरार रखने से मॉरिशस ने लगभग 8 बिलियन रुपए के रणनीतिक अमेरिकी बाजार को सुरक्षित रखा है. साथ ही अब उसे एशिया के बड़े कपड़ा उत्पादक देशों के मुकाबले महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा में बढ़त भी मिल गई है. ये उपलब्धि वाशिंगटन में कई महीनों तक चली गहन कूटनीतिक बातचीत का परिणाम है. मॉरिशस में पानी की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. कम बारिश के कारण जलाशयों और भूमिगत जलाशयों का स्तर लगातार घट रहा है. फिलहाल कुछ इलाकों में पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन अगर सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है. इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए कई समाधान पर काम कर रही है. और विदेश स्तर पर फ्रांस के बोर्डो के पास जंगलों में लगी भीषण आग के कारण लगभग 60,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही फ्रांस और स्पेन में जंगलों की आग से अब तक 2,20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं. और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान तेज़ी से जारी है. राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद अब तक 38,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. और उधर असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल भी राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
0: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: इतिहास के झरोखों से कार्यक्रम में श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और जुड़ने के लिए आपको हमारा फ़ोन नंबर तो याद ही है 4028070। सुमिता और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। श्रोताओं आप बड़े प्यार से गानों को सुनते हैं और इन सिंगर्स ने इतने सुंदर सुंदर गाने हमें दिए हैं कि उनको याद करें तो मन खुश हो जाता है। कभी कभी तो हम सिंगर को या गायक को जाने बिना भी उन गानों का आनंद लेते हैं। ऐसे गीत को गाने वाले मुकेश जी जुलाई के महीने में यदि ना याद किए जाएं तो ना इंसाफी होगी। तो आज मुकेश को मैं और सिमी आपके साथ याद करेंगे। उनका नाम था मुकेश चंद माथुर और 22 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था। अभी भारत तब आज़ाद नहीं हुआ था। और 27 अगस्त 1976, मतलब अगस्त का महीना 1976, उन्होंने गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत को करवट बदलते हुए देखा था। और उनके गीतों में जितने भाव हैं, आज भी लोग उसे सुनकर अगर उसमें कुछ दुख का भाव है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अगर मान लो कहीं पर खुशी है तो मन नाचने को करने लगता है। और राज कपूर की आत्मा लोग कहते थे मुकेश जी हैं, क्योंकि जो भी दर्द भरे गीत या प्रेम भरे गीत उन्होंने गाए, कभी कभी लोग उनको कहते थे दर्द का गायक है वे। आज हम उन्हीं के कुछ गीतों को आपके साथ बांटेंगे और उस आवाज़ को हम दोनों आप तक लाने का प्रयास करेंगे।
1: बिल्कुल, नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को जो इस समय रेडियो मनोरंजन से हमारे साथ जुड़े हैं। और अलका जी ने सही कहा, आज हम मुकेश जी पर बात करेंगे। 22 जुलाई को उनकी जन्मतिथि थी और मुकेश जी एक ऐसे कलाकार हैं जो इस दुनिया से तो चले गए हैं लेकिन उनकी कला आज भी उनके गानों के जरिए हम सुन रहे हैं।
0: और सुमी जी बताना चाहूंगी कि 10 बच्चे थे ये आपस में और ये छठे स्थान पर थे और बचपन से ही पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था
1: जी,
0: लेकिन गायन मानो उनकी आत्मा में बसता था
1: जी।
0: और छुप छुप के उनकी बहन की जो संगीत की कक्षाएं थी उसमें छुप छुप के सुन के उन्होंने अपनी इस कला को मांझना शुरू किया था।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये खासकर जाने जाते हैं दर्द भरे गानों के लिए, है ना?
0: बिल्कुल, वो आवाज ही उनको ईश्वर प्रदत्त मिली थी। और बचपन में वो सोच रहे थे कि मैं तो अभिनेता बनूंगा, लेकिन शायद डेस्टिनी या नियति को कुछ और ही मंजूर था। और उन्होंने PWD में लोक निर्माण विभाग में क्लर्क की भी नौकरी की। एक पारिवारिक शादी में गायक और अभिनेता मोतीलाल ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उनको कहा कि आप मुंबई एक बार आओ। और 1941 में फिल्म निर्दोष में अभिनेता और गायक के रूप में उन्होंने सबसे पहले काम किया था
1: जी। और उस समय मतलब कि अपने शहर को छोड़ के किसी और शहर में जाकर
0: बच्चे का जाना
1: और अपनी करियर को आजमाना एक बहुत बड़ी बात होती थी।
0: आज तो लोग जैसे टूरिज्म है, बसों का पता है, ट्रेन और पैसा भी, लेकिन उस समय एक ऐसे परिवार से निकलकर मुंबई का न्योता स्वीकार कर लेना मानो नियति उनको ढूंढ ही रही।
1: चलिए एक खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। और
0: बिल्कुल

श्रोताओं, इतने प्यारे गायक को जमाना कभी नहीं भुला पाया। मुकेश की आवाज़ ने उनको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और इस आवाज़ ने उनको एक ऐसी पहचान दी कि वे भारतीय आवाज़ के प्रतीक बन गए और मुकेश राजकुमार की आवाज़ बनकर उभरे। आप सोचिए, राज कपूर की फिल्में जैसे आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, इन गीतों को जब उन्होंने गाया तो वे तो पूरे देश में ही नहीं, संसार में भी मशहूर होने लग गए। और मेरा नाम जोकर के गीत तो रशिया तक आज भी लोग गाते हैं। तो श्रोताओं, मुकेश की इस आवाज़ ने वो जो भारतीय संगीत को एक नया अंदाज़ दिया,

0: जिसने हमें आज तक मानो गौरव की अनुभूति कराने का कार्य कर रखा है। और मुकेश की आवाज़ चाहे व्यक्ति नहीं है, लेकिन आवाज़ के माध्यम से व्यक्ति बहुत लंबे समय तक इतिहास के झरोखों से झांकता हुआ भी आधुनिक युग में जिंदा रहता है। बताइए, अभी अलका याग्निक जी को इतना बड़ा पुरस्कार मिला, लेकिन अफसोस कि वो ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं कि वे ना तो गा पा रही हैं न संगीत सुन पा रही हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक दुख होता है अंदर, लेकिन मुकेश अंत समय तक सुंदर गीतों को गाते ही रहे। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं।
1: जी हाँ, यहाँ पर चलिए एक जो गाना अभी चल रहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, इस फिल्म का तराना है और धर्म कर्म फिल्म का ये गाना हमारे श्रोताओं के फेवरेट गाने में से एक है।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: जी हाँ अलका जी, जैसे आपने कहा कि ये एक्टर बनना चाहते थे, पर हमारे जितने श्रोता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको ये भी बता दें कि हाँ, कुछ फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की है, जैसे कि निर्दोष, दुख सुख, आबा, अदब अर्ज, और अनुराग जैसी फिल्मों में इन्हें एक्टिंग करने का भी मौका मिला है। और गायकी की बात करें तो गायक तो मशहूर थे ही, और साथ ही काफ़ी फिल्में जो है इन्होंने प्रोड्यूस भी की है अपने करियर के दौरान।
2: और सबसे बड़ी बात, इनका बेटे नितिन मुकेश और पोते नील नितिन मुकेश भी फिल्म उद्योग से ही जुड़े हुए हैं और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। श्रोताओं, मैं तो कहूंगी बहुत ही भाग्यशाली थे। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के मिशिगन शहर में एक संगीत कार्यक्रम में ही उसके दौरान ही उनको दिल का दौरा पड़ा और वे स्वर्गवासी हो गए थे। देखिए, गायक के लिए गाते गाते चले जाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी।
1: इनके निजी जीवन की बात करें तो इनकी जो शादी है वो सरल देवी से हुई थी, और जो है इनके 5 बच्चे हैं, उनमें से नितिन मुकेश जो है सबसे बड़े हैं, जो 80 और 90 के सालों में इन्होंने काफ़ी फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं और अपने पिता से काफ़ी प्रेरित हुए हैं।
2: श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028070 पर।
0: इतिहास के झरोखों से।

0: किस्मत को बहुत कुछ मंजूर नहीं भी होता, पर फिर भी किस्मत के साथ हम दांव खेलते हैं और हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। तो चलिए जरा अपने श्रोता को हम लेते हैं और पूछते हैं कि वे मुकेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ बहन जी।
0: जी नमस्ते। जी
1: नमस्ते बहन जी,
0: कैसे हैं?
1: जाने वाले तो चले जाते हैं बहन जी, पर यादें छोड़ जाती है।
0: हाँ,
1: चाहे गायक के रूप में या कलाकार के रूप में, किसी ना किसी रूप में हमें जिंदा रखते हैं ना।
0: हाँ, उनके गीत इतने सुंदर हैं कि आप उदास हो या खुश हो, वे गीत आपको सहारा देते हैं।
1: हाँ, तो मैं कहूँगी बहन जी, मुकेश जी के गाने हृदय को छू देता है।
0: सही बात है।
1: दिल को झकझोर देता है, कर्ण प्रिय होता और मन भावन भी होता है। खासकर यह गाना बहन जी जो मेरी जिंदगी से बहुत लागू रखता है।
0: कौन सा?

0: मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: बहुत सुंदर। और श्यामा जी तो कविता भी करती हैं, तो सचमुच ये गाना आपके ऊपर बहुत फिट बैठता है।
0: मैं बहुत पसंद करती हूँ यह गाना, जैसे कि मेरी जिंदगी से बहुत लागू रखता है।
1: चलिए हम कोशिश करेंगे ढूंढने की, शायद चला ही सके।
0: वो फिल्म कभी कभी का है बहन जी।
1: ओके
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार सुमिता जी।
1: जी जी
3: जी, मैं गाना आपका प्रोग्राम हर शनिवार को सुनती हूँ। आज बहुत खुशी है, मुकेश जी के बारे में बोल रहे हैं ना।
1: जी मुकेश जी के बारे में।
3: हाँ, मुकेश जी ने वो रामायण गाई है, संपूर्ण रामायण।
2: अच्छा,
3: आज तक किसी ने ऐसा नहीं गाया है।
2: ओके।
3: हाँ, तो मैं अच्छा होता अगर आप ये बोलती ना तो अच्छा होता।
2: चलिए, आपको जानकारी है तो आप बताएं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी कुछ जोड़े। आपका हाँ, नाम क्या है, आप कौन है?
3: मैं श्रीमती शिवराज हूँ, मैं कैपिटल में रहती हूँ।
2: अच्छा जी, हाँ, जी कुछ और जोड़ना हाँ, चाहेंगी आप मुकेश जी के बारे में तो आप जोड़ सकती हैं।
3: हाँ, मुकेश के बारे में तो क्या कहें, उनसे मुझे सभी गाने अच्छे लगते हैं, खासकर वो मेरा प्रेम हिमालय से।

0: फिल्म पुजारन का है।
1: अच्छा जी,
2: बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और नई चीजें बताने के लिए। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो
1: हेलो
3: हेलो, नमस्ते सुमित जी।
1: नमस्ते जी।
3: हाँ, मैं कटे से आशा दानू बोल रही हूँ।
1: जी आशा जी।
3: हाँ, का बहन जी को भी नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते आशा जी।, जी
3: तो मैं तो ये कहूँगी कि हर गीतों में मिलता है सुर अवतार का नया संदेश, वो है चंद्र माथुर मुकेश
2: जी। बिल्कुल
3: जी। जब आज तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज उनके जो सबसे पसंदीदा गायक हैं मुकेश जी, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके गीतों को सुन रहे हैं। सच में वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था ये गाना उन्हीं के लिए बना है। ऐसा लगता वो डूब के उस गाने को गाते थे,
2: मतलब वो गाना उनकी आत्मा से मानो निकलता था।
3: आत्मा से निकलती थी। वैसे उनके तो सभी के सभी गीत बहुत बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और खासतौर पर आज के इस दौर में उनके गीतों के रिमिक्स भी बनते हैं, जैसे ये मेरा दीवानापन है, सबके रिमिक्स भी बनते हैं। पर कैसे कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल होता है ओल्ड इज गोल्ड, वो कभी दिल से उसकी याद जो है वो नहीं मिटती है।
2: बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
3: वो सदा के सदा सदा बाहर भी रहेंगे और हमारे अंतर मन में बसते ही रहेंगे।
2: बहुत धन्यवाद।
3: उनके सारे गीतों में मुझे जो उनके गीत बहुत अच्छे लगते हैं, जिस देश में गंगा बहती है,
2: क्या बात है,
3: और जैसे होठों पे सच्चाई रहते हैं, और देश प्रेम की जोत जगाती है। और मैं तो सच कहूंगी मेरे यहाँ जो मेरे नई पीढ़ी के बच्चे हैं ना, वो गाना वो गाते हैं, मेरा नाम राजू घराना नाम। जो इस युग के बच्चे हैं जो मुकेश जी के गीतों को इस तरह से गाते, तो
2: बस अगर हमारे बच्चे ऐसे गीत सीखते जाए तो हिंदी कभी नहीं भूलेंगे वे लोग,
3: कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे गीतों को सुनकर वो संगीत के प्रति प्रेरित भी होंगे और संगीत सीखने की उनकी रुचि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
2: बहुत धन्यवाद आशा जी।
3: मुकेश जी की जय हो।
2: हाँ जय हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम एक और श्रोता को भी पकड़ते हैं। हेलो
4: हेलो जी।
2: नमस्ते जी।
4: हरका जी प्रणाम।
2: प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं भाई साहब?
4: मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए।
2: फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं इस मौसम में?
4: तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम।
2: अरे वाह, कुछ सुनाइए मुकेश जी के बारे में।
4: तो मुकेश के बारे में तो सुनाने को तो बहुत है।
2: हाँ।
4: क्या सुनाएंगे, वो तो एक ऐसा कलाकार है जो उसके जगह कोई ले ही नहीं सक रहा है और कोई ले नहीं सकेगा।
2: सही बात कह रहे हैं आप।
4: मुकेश जी ने जैसा गाना गाया है,
2: हाँ हाँ,
4: वो दिल छूने वाला गाना गाया है।
2: क्या बात है।
4: और मैं तो मुकेश के इतने पसंद करता हूँ, इसके गाने सुनते हूँ और उसके गाने भी मानता हूँ।
2: अच्छा,
4: तो आपको क्या बताऊँ कि मुकेश को जो दूसरा है तो वो पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात सही कह रहा हूँ
2: जी,
4: उसका नया जन्म हो गया है।
2: क्या बात है, किस में देख रहे हैं उसे आप?
4: अभी देखने को नहीं, किसी को मिला है।
2: अच्छा, लेकिन आ रहा है।
4: लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा देखने को लिए।
2: मैंने सोचा आप अभिजीत का नाम लेंगे।
4: आपको तो पता चल गया, आपको देखो पता चल गया आपको।
2: बिल्कुल, ऐसा बेपरवाह गायक जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, केवल संगीत का उपासक है वह।
4: बिल्कुल, अभी आपके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैंने मुकेश के गाना मांगा
2: जी, तो देखिए
4: मुकेश के बारे में तो बहुत है बोलने का, सुनने का, सुनाने का, लेकिन ऐसा कलाकार पता नहीं
2: सदियों में
4: तो,
2: मिलता है। सही बात है जी,
4: सपने में नहीं मिलेगा।
2: सही सही।
4: लेकिन बहुत है कहने का, लेकिन बात यह है कि मुकेश इतने अच्छे इंसान थे और इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हुए थे कि सारे दुनिया के दिल छो गया।
2: क्या बात है। चलिए आपको उनका गीत सुनाते हैं, आप आनंद तो लीजिए। ठीक,
4: अच्छे से गाना मुकेश जी के सुना दो।
2: ठीक,
4: तो हम कहेंगे आपको बहुत शुक्रिया, आप अपने अपने जो कर रहे हैं
2: जी।
4: ये दिल जीते, हम लोगों को दिल आप लोग जीत रहे हैं
2: जी।
4: तो चलो हम आपको सुनते रहेंगे, आप सुनाते रहेंगे।
2: बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
4: मैं यहाँ लिस्टरों से मानो सोहन जी बोल रहा हूँ।
2: ओके सोहन जी,
4: हम इंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: ओ श्रोताओं, इस गीत ने तो हर एक का दिल जीत लिया था। सचमुच जीना भी यही है, मरना भी यही है, और उसके बीच की जो जिंदगी है वो कितनी स्ट्रगलफुल होती है, लेकिन वो स्ट्रगल करते करते एक दिन हम मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। इतना मीनिंगफुल ये गीत मुकेश जी ने गाया कि आज भी उतना ही चमक है इस गीत में जितनी शायद तब रही होगी। जिंदगी में कोई अगर निराश भी हो, इस गीत को सुन के जैसे मन भर आता है कि सचमुच जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है।
1: तो चलिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज हमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, आज हमारे श्रोता है
0: नहीं,
1: जो
0: तो मुकेश जी है ना।
1: चलिए मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार सुमित जी, राधा दीदी को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कैसी है राधा जी?
2: जी मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है जी।
2: आप लोग आज जो मुकेश जी पर बात कर रहे हैं ना,
1: जी जी
2: हाँ, तो मुकेश जी के बारे में तो क्या कहें, उनके गाने तो काफी प्रचलित थे, लेकिन उनके वो गाने जिनमें काफी संदेश है वो ये क्या कहते हैं, कैसे कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं।
1: दिल में सच्चाई रहती है,
2: अगर सच्चाई रहती है, और फिर उनके जो पुराने गाने होते हैं ना, वो भूलने वाले याद ना,
0: हाँ, सच
2: दिल जलता है तो जलने दे, इनमें उनकी आवाज कुछ अलग थी। अभी जब इधर
0: हाँ, मतलब उस व्यक्ति ने जो गाया ना, जिसे कहते हैं ना डूब के गाया, बस वो गाना ही बन गया।
2: हाँ,
0: उस समय वो मुकेश नहीं था, बस वो हाँ, गीत ही उसका जीवन था उस समय। हाँ,
2: और जो वो पुराने गाने गाते थे ना दीदी, वो जैसे भूलने हाँ, वाले या दिल जलता हाँ, है, और उनके जब हम उनके ये गाने सुनेंगे, वो बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, तो उनकी आवाज बहुत अलग अलग है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर
2: हाँ,
0: राधा जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा
2: जी। बहुत धन्यवाद हाँ, आप लोगों को भी,
0: क्योंकि और श्रोता भी जुड़ गए हैं
2: जी। ओके,
0: बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या आपको,
2: आप दोनों
1: धन्यवाद आपको भी।
0: हेलो।
3: हेलो
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, मैं भाग लेना चाहता हूँ।
0: मोहन है, आपका स्वागत है जी।
3: धन्यवाद बहन जी। हाँ
1: जी बोलिए, क्या जोड़ना चाहते हैं आप मुकेश जी के बारे में?
3: मैं तो मुकेश का एक बड़ा फैंस हूँ बचपन से, अभी 63 इयर्स हूँ।
1: अच्छा
3: हाँ, अभी मैं लाइव चल रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल
1: हाँ, आप लाइव है, बिल्कुल लाइव है,
0: सब आपको सुन रहे हैं, यू मतलब पूरा विश्व सुन सकता है आपको,
3: सॉरी
0: पूरी दुनिया आपको सुन सकती है अगर वो ऑनलाइन रेडियो सुन रहे हैं।
3: तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटा सा मुखड़े से।
0: जरूर।
3: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में, जब मुकेश का गाना आता है मुझे रोना आता है,
0: मन भर आता है,
3: फैंस हूँ उसका।
1: जी जी जी,
0: जानते हैं जो गीत दिल से गाए होते हैं ना, जब कोई सुनता और गाता है तो उसका भी दिल भर आता है। ये दिल से गाए हुए गीत है।
3: मुकेश फैंस को बोलता हूँ
0: जी,
3: ये हमारा सौभाग्य की बात है
0: जी,
3: सौभाग्य है कि ऐसे गायक हमारे समाज में आया, हमारे दुनिया में आया, ये भगवान का कृपा है हम
0: हाँ,
3: पर
0: हाँ, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड पर्सन था वो।
3: मैं इमोशन हो गया था,
0: कोई बात नहीं।
3: तो मैं सभी को बोलता हूँ कि मुकेश का गाना सुनिए, इसमें बहुत बहुत फिलोसोफी है।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
3: मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा।
0: इतने भावुक मत हो जाइए, वास्तव में गीत व्यक्ति को भावुक बना ही देते हैं, संगीत की ताकत ही कुछ और है, और उसके साथ साथ मुकेश जैसा गायक, फिर तो पूछिए ही मत। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो हेलो, अरे आपसे पहले आपका कुत्ता जवाब दे रहा है।
4: हेलो
0: हेलो, लगता है उसको भी मुकेश जी बहुत पसंद है। जी
4: जी नमस्ते दोनों को।
1: नमस्ते
4: दोनों
1: जी
4: को। हम आंटी बोल रहे हैं गांव फुकोल से।
1: जी आंटी जी
4: जी, हम एक बात बांटना चाहती हूँ
1: जी।
4: वो जब मेरे पिताजी थे, जब मुकेश जी आए थे यहाँ पर मॉरिशस में, वो तो मेरे पिताजी, वो तो फेवरेट सिंगर उनका मुकेश जी था। और कैसे भी करके वो गए थे उनके उनको देखने, उनको सुनने।
0: अच्छा
4: जी हाँ, क्योपिप में लगा था।
0: अच्छा
4: तो उस समय तो हम बहुत छोटे थे, और भी एक बात है कि हमारे यहाँ ग्रामोफोन थे.
0: अच्छा.
4: वो सभी मुकेश के गाने को चुन कर लाकर दिन भर बजाते थे. हमने सुन सुन कर बड़े हुए हैं. और अब जब सुनते हैं ये गाने को तो बहुत याद आते हैं हमारे बचपन, हमारे पिताजी के.
0: मतलब मुकेश जी आपके पिताजी और घर से जुड़ गए हैं, ये कहना चाहिए.
4: हाँ, वो राज कपूर का जबरदस्त फैन था.
0: सचमुच बहुत सुंदर बात आपने बताई कि मुकेश जी मॉरिशस आए थे.
4: जी हाँ, वो ₹5 टिकट था.
0: क्या बात है.
1: ये किस वर्ष की बात है अगर आपको याद होगा तो, कौन से साल में वो आए थे?
4: 65 या 66. हाँ,
0: तो अच्छा. मरने से बस थोड़ा ही पहले.
4: जी हाँ.
0: क्या बात है, आप तो इतिहास के झरोखों से झांक के आ गई.
4: जी हाँ, मुझे बहुत याद है. मेरे पिताजी के गाने, वो अनाड़ी के गाने बहुत पसंद करते थे.
0: बहुत धन्यवाद आंटी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और एक अच्छी याद उन्होंने हमें बताई. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार जी.
1: तो ऐसा करते हैं, गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं. क्यों अलका जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल.

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, आज इतिहास के उस झरोखे में हम पहुंच गए जो दिल को छूने वाली खिड़की है। वो झरोखा ऐसा है कि बस उसकी हवा लगता है छूती ही रहे। अब एक गाना एक और सुन ले, एक और सुन ले। और देखिए, इतना लगाव था उनको संगीत के प्रति। पहले तो छुप छुप के खुद सीखा, फिर अपनी छोटी बहन को भी सिखा रहे थे। और शुरू के दौर में वे जब क्लर्क थे तब भी उन्होंने संगीत को छोड़ा नहीं। और उनके ससुर खुश नहीं थे कि उनकी बेटी एक गायक से शादी करे। और उस जमाने में आपको पता है, गायक लोगों का, लोग सोचते थे करियर क्या होगा।
2: हाँ।
1: यद्यपि उनकी नौकरी लगी हुई थी।
2: हाँ।
1: लेकिन मुकेश जी जब मुंबई गए तो उन्होंने, जो उनकी पत्नी सरल त्रिवेदी थी, उन कहना चाहिए कि भगा कर शादी की। दोनों मुंबई भाग गए। और उस जमाने में भगाकर शादी करना बड़ी वीरता की बात होती थी। आजकल तो माता पिता कहते भी भागने की क्या जरूरत है, जिससे करनी है कर लो, हमें भी मेहमान की तरह बुला लो, क्यों भागते हो
2: जी।
1: लेकिन उस जमाने में भागकर शादी करना एक
2: बहादुरी
1: वाली बात होती थी। और मुकेश जी ने, उनको उनके गायन से ही पहचान मिली।
2: हाँ।
1: इसी से ही वो आगे मुंबई गए। और इस तरह से वह केएल सहगल के बड़े उत्साही प्रशंसक थे। और अपने करियर के समय कभी कभी वे नकल भी किया करते थे। और उन्होंने सहगल जी की आवाज की भी नकल करने की कोशिश की। तो भगवान ने उनको बहुत सुंदर आवाज दी थी। इस आवाज के सहारे वे पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते रहे।
2: चलिए, हम बातों बातों में हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि किन किन फिल्म्स के अवार्ड, फिल्म के गानों के लिए उनको अवार्ड मिले थे। जैसे कि अनाड़ी फिल्म में सब कुछ सीखा हमने, नसीखी होशियारी, इस गाने के लिए उन्हें अवार्ड मिला था। फिर पहचान इस फिल्म में, सबसे बड़ा नादान जो 1970 में आई थी, इसके लिए इन्हें फिल्मफेयर की ओर से अवार्ड मिला था। फिर बेईमान इस फिल्म के लिए जो है इन्हें अवार्ड मिला था। और फिर कभी कभी, कभी कभी फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था। और वहीं पर इन्हें अपने करियर के दौरान एक नेशनल अवार्ड भी मिला था रजनीगंधा फिल्म के इस गाने के लिए जो अब हम चलाने वाले हैं।
1: चलिए आपको ये गीत सुनाते हैं ताकि आप आनंद ले सकें।

0: श्रोताओं, क्या हम समझेंगे मुकेश को? जो गीत उन्होंने गाए, हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? इतनी गहरी आवाज़ और गहरे अर्थ। मतलब उन्होंने इस तरह के गीत नहीं गाए कि चलते फिरते उछलते कोई गीत गा दिया हो। हर गीत में एक दर्शन है, जीवन है। इसीलिए उन गीतों को हम आज तक संजो कर रखना चाहते हैं और अपने दुख सुख में गा के बहुत खुश और संतुष्ट होते हैं। क्यों सुमी?
1: बिल्कुल। और गानों की एक बात करें तो देखो, आज हमने एक बॉलीवुड के किरदार को हमने पकड़ा तो इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े तो हमें बड़ा अच्छा लगा।
0: हाँ, तो असल में उसके गीत व्यक्ति को छूते हैं। हाँ, बस।
1: और कहीं ना कहीं हम देखो कितने प्रोग्राम करते हैं जो फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम है। हमारे जितने सुनने वाले इस समय जुड़े हैं वो भी इस बात को जो है ये सहमत होंगे कि ज्यादातर गानों की फरमाइश खासकर पुराने गानों की होती है। हाँ। मुकेश जी के गानों की होती है।
0: तो चलिए, समय तो कम ही रह गया। हाँ। चलते चलते एक गीत का और आनंद लेते हैं और इसी के साथ नमस्ते, शुभ संध्या।
1: तो चलिए आपको बता दें कि 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो सवेरे 9 बजे चलाया गया था उसे आप दोबारा सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर। तो अलका जी और मैं आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।

0: पर बिजली उत्पादन बढ़ाने से कोयले और पेट्रोलियम पैदावारों के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अधिक मजबूत होगी। स्पोर्ट्स को समावेशन और सद्भावना के रूप में अपनाया गया है। 13 से 15 साल के 80 बच्चों ने आज एम्पावर सेन जुए पुआवांसे नामक गतिविधि में भाग लिया। एनजीओ लव ब्रिज और सफायर द्वारा क्यूपिप के जेम्स बेटी डेविड जिमनेशियम में इसका आयोजन किया गया। फुटबॉल मिल बांटकर रहने के मूल्य टीम स्पिरिट की भावना में दोनों संगठनों के लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया। और विदेशी स्तर पर भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में इस इस्तीफे के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई है। इस बीच पुलिस पर पथराव के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: पचहत्तर साल के 75-year-old के श्री डॉक्टर विनोद बालगोबिन की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शाम 4 बजे ला शापेल ऑडेंट एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर कौन ले व्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कुछ ऐसे महारथी जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जी हां, आज के इस कार्यक्रम में हम कला से संबंधित बातें करेंगे, क्योंकि कला हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और अभी जैसे कई सारे युवा, कई सारे बच्चे वेकेशंस में वे से गुजर रहे हैं, तो वेकेशन का पूरा पूरा लाभ किस तरह से उठाना है, किस तरह से उसे और प्रोडक्टिव बनाना है, किस तरह से उसे और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अपनी कला के साथ हमें कैसे जुड़ना है, इस पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और कला हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता आर्ट गैलरी तक कैसे पहुंचती है और किस तरह से ये जीवन को और भी मायने देता है, इसी पर आज का ये कार्यक्रम आधारित रखेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे आर्टिस्टिक, बिल्कुल एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के प्रेसिडेंट श्रीमान निशाल प्रभु जी, और उन्हीं के साथ आई हुई हैं उन्हीं की एक छात्रा

0: उन्हीं की एक शिष्या और एक आर्टिस्टिक तरह से हमारे साथ जुड़ेंगी सबीना गदाधर। तो आइए उन दोनों का हम स्वागत करते हैं। निशाल जी और सबीना, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल कला से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। वैसे हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि इस वक्त आप स्टूडियो को देख सकते हैं, कितने सारे रंगों से सजाया गया है, जो इन्हीं के हाथों से बनाए हुए कला के जो चित्र है वो हम प्रस्तुत करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो चलिए आज हम बात करते हैं निशाल जी से, जो कि एक प्रेसिडेंट है और कला के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। निशाल जी, हम तो पहले यही जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से कला के साथ जुड़े हुए हैं।
1: देखिए, मेरा जैसे बचपन से शुरू हुआ, लेकिन 22 ईयर से मैं एक्टिवली आर्टिस्ट कर रहा हूँ।
0: मतलब आप इसी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको, आपकी रुचि किस उम्र से जागी कला की ओर?
1: वैसे देखे तो मैंने शुरू किया, मुझे बचपन से ही रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरे जो माता पिताजी, उन लोगों ने भी मुझे डिस्करेज नहीं किया और भी
0: एनकरेज किया।
1: तो बाद में जब मैं स्कूल गया, कॉलेज गया
0: जी,
1: वहाँ पर बहुत से अच्छे टीचर मिले जो जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने छोटी मोटी मिस्टेक से, लेकिन अब उससे जो प्रेम था वो कला से, तो वो बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी गया और कोर्सेज किया। शायद 10 साल तक मैंने आर्ट सीखा, आर्ट वो भी डिज़ाइन भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी गया। तो
0: आज आप यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है और बिल्कुल एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। मैं जरूर जानना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से हमें समझाया, मैं समझती हूँ आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। आपके मन में जो था आपने उसे साकार किया, उसे हासिल किया, और आज आप एक प्रेसिडेंट हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम जरूर जानना चाहेंगे एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ये क्या है।
1: तो ACA या AAC हमारे देश का सबसे पुराना आर्ट एसोसिएशन है।
0: ओके,
1: तो नेक्स्ट ईयर हम 40 ईयर सेलिब्रेशन करेंगे।
0: वाओ।
1: उसका जो पहला प्रधान था उसका नाम है ज्ञानेश्वर दुर्स्वा। वो भी एक जैसे पायोनियर आर्टिस्ट बोलते हैं कि उन्होंने ही आर्ट का शुरुआत किया। स्कल्पचर पहले और थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तक जब बनाया गया तो उन लोगों ने ही यूनिवर्सिटी को शुरुआत किया। तो उसके बाद देव चुरारमन जी आए, वो भी एक बहुत बड़ा कलाकार है। तो अब हाल ही में मैं 2 ईयर्स अब कंप्लीट हो लेने जा रहा है, तो मैंने वो प्रेसिडेंट लिया हमारे जो एसोसिएशन का। 40 ईयर्स होगा नेक्स्ट ईयर, तो 40 मेंबर्स हैं। तो वो डिफरेंट आर्ट फील्ड में है, जो जैसे कला कहते हैं सिर्फ पेंटिंग नहीं है, स्कल्पचर भी हैं, अब डिजिटल आर्ट है, फोटोग्राफी है। तो सब अब सबीना आई, वो क्यूलिनरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्यूलिनरी आर्टिस्ट से वो थोड़ा इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बन गई। तो सब जो हमारे जो एसोसिएशन है सिर्फ बड़े आर्टिस्ट को चांस नहीं देता,
0: यानी छोटे जो
1: शुरू कर रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट करना, और बहुत से ऐसे प्रदर्शन करते हैं और आर्ट वर्कशॉप करते हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट को एनकरेज मोटिवेट करते हैं।
0: ओके, तो यानी आपके यहाँ पर जैसे आप बता रहे हो केवल पेंटिंग या स्केचिंग नहीं है, इसके अलावा बहुत वास्ट है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आजकल पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र बन गया, यानी स्केच है, साथ ही साथ क्ले है, डिजिटल आर्ट है, और आप जैसे बोल रहे हो कलिनरी आर्ट है। तो इसमें जैसे विशेष आपका फोटे क्या है, आप किस क्षेत्र में ज़्यादा माहिर हैं?
1: तो मैं ज़्यादातर पेंटिंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा पेंटिंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरा जैसे काम करने का तरीका वो पहले सिर्फ हमारे मॉरिशस रंग का था।
0: अच्छा।
1: रेड ब्लू येलो ग्रीन।
0: ओके।
1: अब थोड़ा बहुत मैंने वो एक इवोल्यूशन आया, तो मेरा एक मिक्स टेक्निक है जो बहुत यूनिक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये वाला मेरा आर्टवर्क है।
0: ओके।
1: तो उसमें मैं पेंटिंग करता हूँ, वो प्रिंटिंग करता हूँ, एयरब्रश यूज़ करता हूँ, और बताता हूँ कि वो जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो बच्चों के लिए है।
0: अच्छा।
1: वो मैं बच्चों

0: कुछ सिखाते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो टेक्निक कैसे बढ़ावा देकर एक आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, तो जो भी सीखते हैं उसको ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये कहाँ यूज कर देंगे, लेकिन जब उसी टेक्निक को लेकर हम थोड़ा सा अलग काम करें तो
1: बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो कि यू कैन मेक मिरेकल्स आउट ऑफ इट, क्योंकि सच में देखा जाए तो आर्ट एक ऐसी दुनिया है जो आपको अपने अंदर बिल्कुल समाहित करती है, अब्सॉर्ब होते जाते हो और आप की एक अलग ही दुनिया आप रचते हो, एक अलग ही क्रिएटिविटी जो आपके हाथों से आप कैनवस पर उतारते हो। यहाँ पर हमारे साथ सबीना भी जुड़ी हैं। सबीना, आप कितने सालों से आर्ट या पेंटिंग के इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं?
2: मैं बचपन से पेंटिंग करती हूँ, पेंटिंग और क्राफ्टिंग भी करती हूँ। तो मुझे जब मैं प्ले करती थी अपने डॉल के साथ तो मैं अलमारी बनाती थी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है।
1: ओके।
2: जब खेलती थी डॉल के साथ, फिर स्कूल में कंपटीशन था तो मैंने ट्राई किया कंपटीशन, फिर कॉलेज गई तो और कंपटीशन करने लगी। स्कूल में या फिर गोडाउन में कंपटीशन था तो मेरा जर्नी स्टॉप हुआ फॉर्म फाइव में, क्योंकि फॉर्म फाइव हम लोग मोर फोकस होते हैं
1: अकेडमिक लेवल पर, बिल्कुल।
2: तो एनकरेजमेंट नहीं मिला क्योंकि लोग कहते थे वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट कम है।
1: हाँ, सही।
2: हाँ, तो फिर मैं अकेडमिक जर्नी में गई तो बिजनेस करने लगी, मैनेजमेंट करने लगी, फिर मेरा जर्नी चेंज हुआ। तो मैंने केक बनाया, स्टार्टिंग वाज मेकिंग केक, मैंने केक बनाया तो मुझे ऑर्डर्स में मिला डिफरेंट टाइप ऑफ केक टू मेक। मुझे डॉल बनाना था, फिर स्टार्टिंग आई स्टार्ट टू मेक केक चॉकलेट से स्कल्पचर करना था।
1: ओके।
2: चॉकलेट से स्कल्पचर करना था, शुगर पेस्ट से स्कल्पचर करना था। तो मैं पोस्ट करने लगी तो निशाल जी हम लोग काम करते थे साथ में, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया क्योंकि वो एक और टीचर था।
1: बिल्कुल।
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: तो स्पोर्ट्स डे में काम करने लगी उसके साथ, तो बहुत सी इंस्पिरेशन आई क्योंकि उसने क्रिएट किया एक गाड़ी। उसने किया एक गाड़ी क्रिएट किया, तो वो मुझे लगा कि दिस इज अमेजिंग, आई कैन डू सेम, आई कैन डू मच बेटर, देयर इज नो बाउंड्री, नो लिमिट, व्हाई आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, तो फिर मैं थिंक करने लगी हायर, टू थिंक मोर हायर। फिर उसने मुझे कहा मिस आप बना सकते हैं कुछ पेंटिंग? मैंने कहा क्यों नहीं, ट्राई कर सकती हूँ। तो कैनवा, मेरा पहला कैनवा, लाइफ में पहला कैनवा एग्जिबिट हुआ अनंता में।
1: ओहो।
2: हाँ, तीन कैनवा बनाई।
1: हाँ,
2: तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ये कर सकती थी,
1: यानी वो अंदर कहीं पर छुपा हुआ था जो आपको पहले से शौक था। वो कहीं पर उभर कर बाहर आया। और इसमें निशाल जी ने आपको बहुत इंस्पायर किया।
2: तो फिर आई नेक्स्ट इवेंट वर्ल्ड आर्ट डे, तो उसने कहा थीम है स्पाइसेस। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, एक ट्रोम्प ऑय बनाऊँ, ट्रोम्प ऑय या फिर कुछ कंक्रीट से एक चिली बनाओ। उसने कहा मिस आप सोचो,
1: आप खुद देखो क्या बना सकते हो,
2: क्या बना सकती है। तो हम गए नेल्सन मंडेला, तो साइड देखा, उसने कहा ये देखो ये है जगह, क्या बना सकती है। तो सम पिक्चर क्लिक किया, फिर मैं गई घर पे और सोचने लगा, और फिर हम साइट डिफरेंट साइट पे विजिट करने लगे, जैसे कि अप्रवासी घाट। उसने कहा ये देखो ये है एक बास्केट था
1: जी,
2: उसने कहा ये देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है।
1: ये मतलब आपने हर तरह के आर्ट को देखा और तब जाकर आपको कहीं ना कहीं आइडियाज उभरने लगे।
2: तो फिर नेल्सन मंडेला में मैंने क्या किया, तो पिक्चर क्लिक करने के बाद उसको चैट जीपीटी में डाला,

0: अपनी स्केचबुक ली, ड्रॉ करने लगी डिफरेंट टाइप ऑफ बास्केट ऑफ स्पाइसेस. फिर चैट जीपीटी ने बनाया एक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केच एंड द बिल्डिंग. तो फिर आया ये इंस्टॉलेशन.
1: ओके,
0: तो ये एक पिक्चर था. नाउ मुझे ये रियलाइज करना है, रियल, टू मेक इट रियल.
1: उसमें अब आपकी कारीगरी डालनी है. हाँ, उसमें
0: तो थिंक करने लगी कैसे ये ड्रॉपिंग इफेक्ट बनाऊं. तो ये ऑटोमेटिकली आ गया,
1: जैसे वो बनता गया.
0: हाँ,
1: बनता गया. जैसे जैसे आप उसमें जान डालते गए अपने हाथों से, वो बनता गया. हाँ, बनता गया. एंड फाइनली एक तरह से एक वो स्पाइस के लिए आपने उसको तैयार किया. हाँ, वो एक था वर्ल्ड आर्ट डे के लिए आपने तैयार किया. सो हाँ, मैं समझती हूँ एक बहुत ही लाजवाब सा. और जैसे अभी थोड़ी देर पहले सबीना जैसे बता रही थी निशाल जी कि जॉब प्रोस्पेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि आर्ट के क्षेत्र में कई बार हम कहते हैं कि आगे क्या करो, आर्ट बनाकर क्या करोगे, इससे तो पैसे नहीं कमाए जा सकते, पेट नहीं भरा जा सकता. तो निशाल जी, इस पर आपका परसेप्शन क्या है?
2: देखिए, ये सच है, क्योंकि मैं भी जब आर्ट शुरू किया तो मेरे भी टीचर ने भी बोला, देखो आर्ट में प्रोस्पेक्ट नहीं है. देखिए, आज मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने पार्ट टाइम लेक्चर किया, आर्ट एजुकेटर हूँ और प्रधान भी बन गया. तो ऐसे नहीं कि आर्ट में प्रोस्पेक्ट नहीं है. अगर अगर दिमाग डाले, दिल डाले तो कुछ भी हो सकता है.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन अब जब इस विषय पर बात कर रहे हैं तो और सिर्फ और से नहीं कनेक्टेड होता है. और मतलब ग्राफिक डिजाइन होता है, अब डिजिटल डिजाइन हुआ, अब ये वीडियोग्राफी एक तरह की आर्ट है, क्योंकि फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी में ये होता है. वो जब 3D का मार्केट बनाते हैं, वो जैसे एक बिल्डिंग अब सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो वो उसका इंटीरियर डेकोरेशन वो भी आर्ट है.
1: आर्ट है. और
2: फैशन डिजाइन, जहाँ पर हम
1: कपड़ों से काम करते हैं,
2: वो भी, वो जो डिजाइन प्रिंट करते हैं वो भी आर्ट से रिलेटेड है.
1: खान पान की जैसे बताया कि केक में भी आप आर्ट डाल सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल.
2: वैसे देखें तो होटल का प्रोस्पेक्ट है.
1: बिल्कुल.
2: और तो ऐसे देखें तो बहुत से जो इवेंट मैनेजर कहते हैं,
1: उसमें भी आर्ट, उसमें भी दिखाई है आर्ट.
2: वो एक चीज बोलते हैं, और डायरेक्टर्स वो लोग क्रिएटिव थिंग सोचते हैं.
1: तो
2: ऐसे क्या करें जो अलग हो, तो वो आर्टिस्ट बन गया. वो जो माइंडसेट होता है, जो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी का काम है, वो आर्टिस्ट का है.
1: बिल्कुल.
2: तो आर्ट मतलब सिर्फ पेंटिंग का नहीं,
1: वास्ट है. हाँ, बहुत वास्ट है. देखा जाए तो
2: आपका डेकोरेशन बहुत सुंदर है.
1: इसमें भी आर्ट की जरूरत पड़ती है. कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह से होने चाहिए. और मैं समझती हूँ अगर आप कहीं पर ग्राफिक्स या ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काम करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक जो आपका मन का जो कोना है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है. तो डेफिनेटली, तो यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी निशाल जी कि आपकी लाइफ में जब आपने शुरुआत की तो पहले पहले चैलेंजेस क्या क्या आए थे? क्योंकि मैं समझती हूँ हर एक टीचर, हर एक इंसान के जीवन में एक टाइम होता है जब उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो आर्ट के क्षेत्र में आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए?
2: पहले तो बड़ा सा चैलेंज हुआ कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट को वो चांस नहीं मिलता. और बहुत से जो सीनियर आर्टिस्ट है बोले कि अब तुम नहीं कर पाओगे, तो डिस्करेज कर देते हैं वो या ऑर्गेनाइजर्स. तो उससे मुझे बहुत कैसे बोले डिस्करेजमेंट मिला. लेकिन मेरा जो अंदर का जो आर्ट है वो जैसे एक रिवॉल्यूशन हुआ. मैंने बोला देखो मेरा जो मान सम्मान है आर्ट का, जो प्यार है, वो कोई नहीं मिटा सकता. तो मैंने अपने आप से वो आर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया. मैंने नहीं भी सोचा कि वो मिनिस्ट्री आर्ट से वो हेल्प
1: मिलेगा,
2: क्योंकि वहां पर जो भी आता है वो कुछ ना कुछ बोल के जाता है कि मेरा दिमाग हिल जाता है. तो मैंने अपने आप से शुरू किया. वो फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने साल वो जो रोजिल में गैलरी था, तो अब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा था. तो वहां से शुरू हुआ, गैलरी बॉक्स बोले. तो एक हुआ वहां पर, मैंने कोलैबोरेटिव किया मेरे दोस्त के साथ, फिर अपने टीचर के साथ एग्जीबिशन किया, फिर बनता ही गया, बनता ही गया, बनता ही गया.

0: तो उससे क्या हुआ, एक्सपीरियंस मिला वो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हमारे जो एक्सपीरियंस लाइफ का जब हमें स्ट्रांग बनाता है
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और एक्सपीरियंस देता है, तब से आज तक मैं सिर्फ यही करता हूँ।
1: और
0: और
1: आपने देखा है कि मतलब आपको जब एक आपने एक चीज़ ठान ली है, आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते अपने आप खुलते चले
0: हाँ,
1: जाते हैं.
0: लेकिन मेरा अलग है क्योंकि मैं औरों को डिस्करेज नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: मैं एनकरेज करता हूँ।
1: नहीं, और
0: जैसे
1: मैं समझती
0: साबिना
1: हूँ
0: और
1: जीवन
0: हैं।
1: में
0: हाँ
1: हमें यही तो सीखना है. और मैं समझती हूँ जब हम एक आर्ट के क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको एक अलग से पहचान देते हैं. और वो आप जब कहते हैं ना कि हम दूसरों को उभारने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपकी जो छवि है वो अपने आप उभरती चली जाती है. और जैसे आप एक टीचर भी हैं, आप दूसरों को एनकरेज करते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी निशाल जी, अभी फिलहाल प्रेजेंट में आपके साथ कितने स्टूडेंट्स या कितने ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आर्ट के साथ?
0: वो हमारे एसोसिएशन में
1: जी,
0: वो 40 40
1: 40
0: आर्टिस्ट हैं।
1: स्टूडेंट्स हैं. तो जैसे 40 लोग
0: नहीं,
1: हैं.
0: 40 स्टूडेंट्स नहीं, 40 आर्टिस्ट हैं।
1: ओके.
0: लेकिन जब हमारे स्टूडेंट वो कंप्लीट कर देते हैं
1: हाँ,
0: या वो यूनिवर्सिटी हो गया, तो उन लोगों को हम इनकरेज करते हैं आने के
1: आने
0: लिए।
1: के लिए.
0: लेकिन जब वो स्टडीज कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहाँ पर उन लोगों को खींचते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
1: जी
0: तो उससे क्या होता है, उन लोगों का प्यार और भी बढ़ जाता है आउट
1: बिल्कुल.
0: के
1: और मैं
0: वो।
1: समझती हूँ अगर उनको एक क्लियर पाथ मिले, उनको एक गाइडेंस मिले, तो ये एक बहुत आसान हो जाता है उनको चूज़ करने के लिए कि उनको किस दिशा में आगे जाना है. निशाल जी, आप एक टीचर भी हैं आर्ट की तरफ में, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा या जब कोई यंगस्टर आर्ट के दिशा में जाते हैं, तो उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट, उसमें आपने क्या चेंजेस देखे हैं?
0: देखिए, वो जहाँ पर वो क्या होता है कि ग्रेड 9 में बहुत बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, तो वो नेशनल एग्जाम होता है।
1: बिल्कुल.
0: वो जैसे उन लोगों ने पेपर डिज़ाइन किया और वो स्टूडेंट को इंस्पायर्ड होता है,
1: हाँ
0: उन्हें
1: हाँ
0: वो आर्टिस्ट इंटरनेशनल या लोकल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से चित्र
1: जी
0: मैंने लाया,
1: हाँ.
0: कुछ इंटरनेशनल का है, कुछ लोकल का है।
1: ओके.
0: तो जब हम वो प्रदर्शन करते हैं तो उन लोगों को ये चांस मिलता है। तो मैं आर्ट को एक एक्टिविटी बेस जैसे करता हूँ, वो प्रैक्टिकल है,
1: हाँ
0: लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो उसमें मज़ा आए, उसमें वो एन्जॉय करे उसका जो टॉपिक है। तो मैं जब क्लासेस करता हूँ,
1: जी
0: शायद 2 3 बार में म्यूजिक डाल देता हूँ,
1: हाँ
0: तो वो इंटीग्रेट हो जाता है।
1: बिल्कुल.
0: वो आउटडोर करते हैं, बच्चों को एग्जीबिशन लेके जाते हैं, उन लोगों को पसंद हो जाता है।
1: बिल्कुल.
0: तो ऐसे चाहिए कि उन लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ऐसे और सिखाना चाहिए कि उन लोगों को ऑटोमेटिकली
1: उसमें
0: हाँ मजा आए।
1: मजा आए. अपना इनपुट
0: हाँ,
1: उनका ये होना चाहिए कि वो मतलब सब कुछ भूलकर पेंटिंग करे.
0: पेंटिंग।
1: और सबीना, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब आपने पेंटिंग करना शुरू किया या जब आप पेंट करती हैं या जो भी क्रिएटिव काम करती हैं, उसमें फिर आपका पर्सनल जब आप डालती हैं, तो आपका एक कैसा अनुभव होता है? हाउ डू यू फील कि आप जब उसमें एनग्रॉस्ड हो जाती हैं, इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है?
2: तो पहले आर्ट एक एक्सप्रेशन फॉर्म है, तो जो भी इमोशन होता है काम पे होता है.
1: बिल्कुल.
2: जैसे कि मैं जब केक बनाती हूँ, अगर मेरा मूड ख़राब है तो ये केक भी आ जाता है. तो इसलिए इमोशन हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होता है अपने काम पे.
1: ट्रू.
2: ये है पहली बार.
1: बिल्कुल.
2: और जब मैं पेंट करती हूँ तो इमोशन रिलीज करती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ. अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, दूसरों के काम भी देखती हूँ, डिफरेंट काम को देखती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ.
1: तो जैसे आपको एक तरह से, आप पूरी तरह से उसमें खो जाती हैं
2: हाँ
1: इमोशनली. आपने जैसे कहा कि एक तरह से जैसे हम म्यूज़िक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आर्ट भी एक तरह से इसी तरह का एक फॉर्म है जहाँ पर हम अपने इमोशंस के साथ उसमें जुड़ते हैं. तो ये कह सकते हैं निशाल जी कि जो लोग आर्ट के किसी भी फॉर्म के साथ जुड़ते हैं

0: हैं वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं?
1: ऐसे कर सकते हैं कि उन लोगों का शायद वो और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो शायद हम बात न अच्छे से एक्सप्रेस ना कर सकते, हाँ, हाँ. लेकिन जब हमारे कला से हम बात करते हैं तो हमारे इमोशन वो आ जाता है वहाँ
0: जी,
1: पर
0: जी.
1: तो और एक थेरापी है
0: बिल्कुल,
1: जिसमें जो भी स्ट्रेस है जो भी चीज है वो हम निकाल सकते हैं.
0: तो जैसे एक तरह से आप उसमें पूरी तरह से भूल सकते हो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हम उससे निकल कर एक दूसरी ही दुनिया में अलग जा सकते हैं. तो देखा जाए तो आज हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं. एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे सभी नाब ने भी कहा कि सभी लोग कहते हैं कि अकेडमिक में फोकस ज़्यादा करो क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई प्रोस्पेक्ट है, पर आर्ट की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमें पूरी तरह से, कई बार ऐसा होता है कि आप एक आर्ट का शुरू करते हो तो उसे कहीं पर ऐसा लगता है कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा होता है कि उसको कंप्लीट करते जाओ, इट गोज ऑन फ्लोइंग. तो इस पर एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि बहुत बच्चे एनकरेज होते हैं या कई बार ऐसा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए उसको ड्रॉप कर दो?
1: ये हो रहा है मॉरिशस में. क्या हो रहा है कि जो बच्चे आर्ट को अच्छी तरह से करते हैं वो और नहीं करते क्योंकि वो सब सब्जेक्ट में अच्छे हैं. तो जो शायद थोड़ा बहुत कर सके और जो दूसरे जो सब्जेक्ट में है वो भी वीक है तो वो आउट लेते हैं. तो उन लोगों के साथ अब काम करना है तो बाद में शायद थोड़ा बहुत वो कठिनाइयां हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम कह सकते हैं कि आजकल बहुत से कैसे कहते हैं लेजर एक्टिविटीज होता है,
0: हाँ,
1: वो मोबाइल हो गया,
0: हाँ,
1: अब जैसे बहुत पार्क्स हैं,
0: बिल्कुल स्पोर्ट्स है वगैरह,
1: स्पोर्ट्स अच्छा है,
0: हाँ,
1: लेकिन जब लेजर एक्टिविटीज जो बाहर हो जाते हैं वो घूमने फिरने का, गेमिंग करने का, वो
0: बाहर, तो हाँ बिल्कुल, जैसे
1: बच्चे का कंसंट्रेशन सेम नहीं है,
0: सेम नहीं है, वो थोड़े जैसे अनफोकस्ड रहते हैं,
1: अनफोकस है
0: बिल्कुल.
1: लेकिन ऐसे एक एज होता है तो उन लोगों सिर्फ को कंट्रोल करना है
0: बिल्कुल,
1: तो बाद में अपने आप से वो सीरियस बन जाते हैं
0: बिल्कुल, मतलब शुरुआत में ही थोड़ा सा उनको गाइडेंस चाहिए और जो उनको दिखा सके कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है. तो बिल्कुल आज हम आर्ट पर बात कर रहे हैं और आर्ट कितना आवश्यक है या फिर वो किसी भी फॉर्म का आर्ट हो सकता है. और जैसे निशाल जी ने अभी अभी हमने समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग और स्केचिंग ही आर्ट होता है, आगे चलकर इसमें भी बहुत ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिस पर अगर हमें ध्यान दें तो जीवन में आर्ट, हर क्षेत्र में आर्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायना मिलता ही है. तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में आज के चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने.

0: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में निशाल प्रभु जी से, और सबीना हमारे साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्ट क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे स्केच पेन लेकर दीवारों पर कलर करते हैं उसे और सुंदर बनाने के, उनकी दृष्टि में वो उसे और सुंदर बना रहे हैं, पर हमारी दृष्टि में वो दीवार को गंदा कर रहे हैं। लेकिन हम सच में कहना चाहेंगे कि जहाँ पर बच्चों को हम प्राथमिकता देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये उनका इमोशन है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले सबीना हमें बता रही थी कि क्यों ज़रूरी होता है आर्ट, आइए जानते हैं सबीना जी बिल्कुल आर्ट का इम्पोर्टेंस आज के जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह से हमें बता रही थी कि आर्ट किस तरह से हमें क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है, हम ज़रूर चाहेंगे आप भी इसे बताकर हमें, हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं।
1: तो आर्ट का इम्पोर्टेंस, ये हमें सिर्फ इमोशन पेंटिंग और सिर्फ इमोशन, हम हमारा इमोशन सिर्फ नहीं डालते हैं पेंटिंग में। आर्ट होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, तो ये है हाईएस्ट स्किल। जब हम एक टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जब हम देखते हैं तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन हाईएस्ट स्किल होता है। जब हम लोग स्कूल जाते हैं वहाँ पे एम्फेसिस होता है कॉग्निटिव स्किल पर,
0: बिल्कुल।
1: मगर जब क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है वहाँ पे, जब बच्चे काम करने लगे और

0: अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर वो लोग क्रिएट कर सकते हैं एक बिजनेस,
1: बिल्कुल
0: एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल जब देखते हैं मार्क ज़करबर्ग, तो उसने क्रिएट किया फेसबुक, ये है इनोवेशन। जब देखते हैं इलन मस्क गाड़ी बनाते हैं, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। तो हाईएस्ट स्किल होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। तो बच्चों को एंकरेज करना चाहिए और चूज करने के लिए, क्योंकि जब जब मैं बड़ी हुई, खुद का लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग
1: डेवलप
0: हुआ, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एकेडमिक इम्पोर्टेंट है एक जॉब पाने के लिए, मगर खुद की चीज क्रिएट करने के लिए खुद का थिंकिंग होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और ये केवल आर्ट के द्वारा, फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट का कोई भी क्षेत्र हो, उसे आप चूज करें ताकि एक तरह से आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सके। और ये मैं समझती हूँ, कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी और से मांगे नहीं, आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आपको कहीं पर कोई भी मुश्किल आएगी, आप उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। जी हाँ, निशाल जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि एक आर्ट एग्जिबिशन एक्सपोज ये किया गया है, तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ पर है और क्या है इसका थीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
2: तो ये एग्जीबिशन हो रहा है अनंत आउट गैलरी में।
1: हाँ हाँ।
2: और उसका थीम है एको,
1: एको यानी गूंज,
2: गूंज।
1: ओके,
2: तो किसका गूंज? वो है हमने एक वर्ल्ड ऑडी इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल किया था, तो वो अप्रैल में होता है। तो ये हमारा 10वां या 12वां शायद होगा।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसमें क्या हुआ, हमने इंटरनेशनल किया, क्योंकि हर बार जब हमने किया तो डिफरेंट प्लेसेस में किया, तो इस बार हमने एक रेजिडेंसी किया।
1: okay.
2: और वो एक कैंप था जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पार्टिसिपेंट आए, आर्टिस्ट आए। तो 24 आर्टिस्ट इंटरनेशनल थे वहाँ पर, लेकिन 19 मॉरिशस आए, तो 9 डिफरेंट कंट्रीज से। तो उसमें मॉरिशियन आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट मिलजुल के रहे और बहुत से आर्ट एग्जीबिशन या आर्ट वर्कशॉप हुए। एक हुआ नेल्सन मंडेला में, दूसरा हुआ बोटानिकल गार्डन पोम्पलेमूस में, और एक हुआ पॉलिटेक्निक्स पोम्पलेमूस में, और एक लाइव पेंटिंग हुआ ओस्लागे में। तो बहुत से जो प्रदर्शन हुए और एक्टिविटी हुई, उसमें जो आर्टिस्ट आए थे उन लोगों ने पेंटिंग किया, स्कल्पचर किया। तो हमने सोचा कि इस सेलिब्रेशन को और बढ़ाए, तो हमने एक एग्जीबिशन किया कि एको, तो उसमें सब जो आर्टिस्ट का आर्टवर्क है हमने डाला, और उसमें बहुत से सहयोगी मिला। वो हमारे पार्टनर थे स्मॉथ मॉरिशस, वो उसका प्रधान है यश रामचंद जी। तो और बहुत से मिनिस्ट्रीज आए, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टर्शियरी सेकेंडरी, और जो हमारे पुलिस फोर्स हैं उन लोगों ने भी हमारे हेल्प किया। तो एनजीओज थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जो यूनिवर्सिटी थे, तो MGI आए, MIE आए, पॉलिटेक्निक्स आए, और वो UTMB, तो और एसोसिएशन थे। हमारा एसोसिएशन का नाम है एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, लेकिन हमारी तरह बहुत से ऐसे एसोसिएशन हैं वहाँ पर हैं, काल्म लेगायो, और हैं वो एक्वागल के प्रधान रियाजुलादीन, और हैं तो एयरविन, तो एक है पोताश, वो लोग भी ऐसे जो आर्ट का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका अलग क्या हुआ, हमने सब लोगों को एक साथ लिया, क्योंकि वो जो वर्ल्ड आर्ट डे है वो जैसे एक आर्ट का बर्थडे है। तो इसका सेलिब्रेशन सिर्फ

0: क्यों क्यों सिर्फ मैं करूं, तो साथ
1: जितने भी लोग आर्ट में हैं वो सभी लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया।
0: तो रीयूनियन आइलैंड से आर्टिस्ट आए, तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नाम है वो चार्ली लेस्केल है, उसने भी बहुत से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। जब हम गए उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया थाईलैंड में, तो अब वो नहीं आए लेकिन उसने एक ग्रुप क्रिएट किया रेनी नाले में, उन लोगों को बेचा। वहाँ पर दो म्यूजिशियन थे, एक गायक थे। तो ऐसी सेलिब्रेशन हुआ कि म्यूजिक था, गायक थे। तो मॉरिशस का भोजपुरी हमने उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मॉरिशस का सेगा डांस हुआ। तो सब जब एक इंटरकल्चरल शेयरिंग था, तो ये उसका जो स्लोगन भी हमने बुलाया लेट्स सेलिब्रेट, अच्छा से हुआ। हमारा एक साइन था ऐसे, क्योंकि साइन लैंग्वेज में ये इसको डब्ल्यू कहते हैं, सो वर्ल्ड ऑडी। तो ये भी बहुत चला क्योंकि सब लोग जो आए वो फोटोग्राफ लिए ऐसे लिए। तो ये सब जो अच्छा मोमेंट हमने सेलिब्रेट किया, और एक जैसे अपनापन बिल्ड हुआ। वो जो आर्टिस्ट गए उन लोगों ने बोला कि मैं भी देश विदेश गया, चाइना गया, रेनियन थाईलैंड गया, लेकिन ये जो हमने किया वो बहुत लोकल था। जैसे हमने वो सिख करी जैसे खाते हैं,
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रेडिशनल पूरा पूरा एस्थेटिक आपने वो रखा। हाँ जी, और जैसे
0: गीगावाई होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑथेंटिक, हमने बजिया भी किया सब।
1: हाँ, उसी तरह से सेलिब्रेट किया, और जैसे एक तरह से वो आर्ट फॉर्म को आपने प्रदर्शित भी किया, और साथ ही साथ जो मॉरिशस का जो क्विजिन कल्चर है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको बरकरार रखते हुए आपने इसका भी प्रदर्शन किया। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट रहा मैं समझती हूँ। और जैसे आर्ट का होना, आर्ट फिर वो चाहे कोई भी फॉर्म में हो, कुकिंग फॉर्म में हो, या फिर डांस फॉर्म में हो, आर्ट फॉर्म म्यूजिक फॉर्म में हो, या किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, ये हमारे जीवन को एक अलग रंगों से ढालता है, एक अलग अलग स्तर पर हमें ले जाता है। और जैसे निशाल जी ने भी कहा, सबीना ने भी कहा कि ये हमें क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है, किस तरह से एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएटिविटी का जो समंदर है वो बहुत ही गहरा है, आप जितना डीप जाना चाहें उतना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बिल्कुल आर्ट जो है वो आपको बिल्कुल, कहते हैं ना कि आर्ट को डिविनिटी के साथ जोड़ा गया है, जहां पर आप एक आर्ट के फॉर्म में जुड़ते हैं वो अपने आप में एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ती है, मानवतावाद के साथ जोड़ती है। यहाँ कोई धर्म की सीमा नहीं, यहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं, कोई ऊँच नीच नहीं, और ये कहीं ना कहीं आपको दिल से दिल को जोड़ता हुआ एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा माध्यम है, जहाँ पर एक आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं। और मैं समझती हूँ आज विश्व भर में हम शांति के लिए बातें तो बहुत करते हैं, पर शांति के लिए कहीं ना कहीं हमें एक, कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करना है, और ऐसा ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी। और निशाल जी एक टीचर होने के नाते बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट का आज हमारे जीवन में। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करने के लिए बिल्कुल आ पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ जुड़े कादिया जी, जो इस वक्त तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं, उरुसा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और जिनेश प्रोड्यूसर जो हमारे साथ जुड़े रहे, और ये कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में इन्हीं का सहयोग मिला। रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण और MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए इसी के साथ निशाल जी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को आमंत्रित कर सकते हैं आपकी आर्ट गैलरी के लिए। ये कब से कब तक लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ताकि जो लोग आना चाहें वे ज़रूर आकर विजिट कर सकते हैं।
0: तो वो जो एग्जीबिशन हो रहा है उसका नाम है इको, वो अनंता आर्ट गैलरी पुतुपमा में हो रहा है
1: जी,
0: और वो शुरू हो गया इस हफ्ते से, और वो जाएगा 23 अगस्त तक, और उसका टाइमिंग है वो शुरू होता है 9:30 और वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वेडनेसडे को वो बंद होता है।
1: यानी ओपन टू पब्लिक है
0: और बच्चों को

0: इनक्रेज करेंगे कि आएं, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं वो ऑट का, वो फॉर्म 5 HSC और नेशनल एग्जाम शुरू हो गए,
1: मिल सकता है। बिल्कुल, एक तरह से उनको देखने के लिए एक अवसर मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर चित्र हमारे पास ऐसे डेकोरेट किए गए हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे चित्र है जिन्हें उठाकर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर बहुत ही सुंदर लाजवाब पेंटिंग्स। और मैं इसके लिए निशाल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबीना, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और बिल्कुल बेस्ट विशेज हमारी इस टीम को हम कहेंगे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देंगे, पुनः उपस्थित होंगे एक ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से. नमस्कार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की औपचारिक लॉन्चिंग आज क्यूपिप में की गई. इस पहल के तहत घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए खरीद लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 75,000 रुपये प्रति परिवार होगी. इस योजना का लाभ 3,600 परिवारों को मिलेगा. पात्रता के लिए परिवार की मासिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. मंत्री पैट्रिक आसियावादन ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने से कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अधिक मजबूत होगी. स्थानीय रचनात्मकता को बढ़ावा देना और हमारे युवा कलाकारों को पेशेवर बनाना, पायोत की सेंटर ऑफ फॉर्मेशन आर्टिस्टिक ने आज सुबह फिनिक्स के इंदिरा गांधी इंडियन कल्चरल सेंटर में अपना ओपन डे और प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया. ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कला की विभिन्न विधाओं में उनके काम को सामने लाने का अवसर था. और इस अवसर पर कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया, जूनियर मिनिस्टर वेहोनिक लुगोविन और भारत की उप उच्चायुक्त अपर्णा गणेशन भी उपस्थित थे. स्पोर्ट को समावेशन और सद्भावना के रूप में अपनाया गया है. 13 से 15 साल के 80 बच्चों ने आज एम्पावर जन ज्वीपू अवांसी नामक गतिविधि में भाग लिया. एनजीओ लव ब्रिज और सफाई द्वारा क्यूपिप के जेम्स वटी डाविड जिमनेशियम में इसका आयोजन किया गया. और विदेश में, भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बिहार में नीट पेपर की लीक मामले में इस इस्तीफे के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई है. इस बीच पुलिस पर पत्थर फेंकने के बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हमें आगे दीजिए. नमस्कार.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.

इस समय मॉरीशस में शाम के 4:06 हुए हैं। सबों को संजय की ओर से जय मॉरीशस, जय सियाराम, नमस्कार, आदाब। स्वागत है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। आज शनिवार की शाम है और शनिवार की शाम को हम पेश करते हैं प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज की तारीख 25 जुलाई और कल है 26 जुलाई, यानी कि हम इस जुलाई माह के अंतिम वीकेंड पर हैं। देवियों सज्जनों, दोस्तों, आज क्या विषय हमने रखा है हमारे इस प्रोग्राम में, हम आपको बताते हैं। जहां पर जमीन, जहां पर समुद्र जमीन और धरती से मिलता है, एक रीजन है, एक इलाका है, जहाँ खरे पानी में, खरे जल में चंद विशेष पौधे उगते हैं। ये पौधे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं पौधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल की तारीख को, यानी 26 जुलाई को, एक विशेष तिथि घोषित की है। इन्हीं पौधों को लेकर, इन्हीं पौधों को लेकर आज हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। सो आप हमें उस पौधे का नाम बताएं, आप हमें उस पौधे का नाम बताएं। ऑन कैट सौंदर्य का तो है सुसंजीस। गीत गाथा देश की अब इसे लेकर शाम के 5 बजे तक।

0: जी हाँ, गीत गाथा देश की में हमने ये कहा कि जहाँ पर समुद्र धरती से मिलता है, ज़मीन से मिलता है, एक रीजन है, एक इलाका है जहाँ खरे जल में चंद विशेष पौधे उगते हैं और ये पौधे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं पौधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल की तारीख यानी कि 26 जुलाई को एक विशेष तिथि घोषित की है। आप हमें उस पौधे का नाम बताएं, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते संजय जी।
0: नमस्ते उमा जी, एक क्वायर की उमा जी।
1: जी
0: आप ठीक हैं? स्वास्थ्य ठीक है?
1: ठीक है
0: उमा जी, आप बताएं हम किस पौधे की बात कर रहे हैं?
1: मैंग्रोव।
0: आप हमें बताएं कि जब आप समुद्र तट पर जाते हैं तो किस समुद्र तट पर ज्यादा जाते हैं? बेल्मो वहाँ पर आपको मैंग्रोव दिखता है?
1: नहीं, वहाँ पर नहीं है।
0: या तो बहुत ही कम दिखता होगा। हमें यहाँ पर उनकी लाइन, उमा जी की लाइन कट गई है। जहाँ तक मुझे ख्याल है जो सागर मंदिर है उस रास्ते पर जाते हुए चारों ओर, सागर मंदिर के चारों ओर हमने देखा है मैंग्रोव ट्री। तो उमा जी ने सही जवाब दिया, हम मैंग्रोव की बात कर रही हैं। और हर साल के 26 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 26 जुलाई को इंटरनेशनल मैंग्रोव डे घोषित किया है, जिससे कि लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इन आवर लाइफ। सो उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ निभाया। अफसोस आपका क्रेडिट आपके मोबाइल पर समाप्त हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से फोन कर सकती हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए।

रेडियो मनोरंजन के लहरों पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय लेकर आए हैं और वो है हमारे मैंग्रोव का संरक्षण। और मैंग्रोव इलाकों का संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। अब रामसार कन्वेंशन 1971 में आया, इसलिए उसका नाम रामसार रखा गया है क्योंकि रामसार नामक एक शहर में उस कन्वेंशन को लिखा गया था 1971 में। आप हमें फोन करके बताएं कि रामसार किस देश का शहर है, आप हमें बताएं कि रामसार किस देश का शहर है। आपका जवाब ऑन 402 80 70।

0: गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हर शनिवार की शाम 4 से लेकर 5 बजे तक और हर एक शनिवार को हम एक अलग विषय रखते हैं और आज हमने रखा है विषय मैंग्रोव क्योंकि हर 26 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित होता है इंटरनेशनल मैंग्रोव डे ये साबित करने के लिए कि मैंग्रोव हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इन सभी इलाकों को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन है जो साइन किया गया था 1971 में और जिसे कहते हैं द रामसर कन्वेंशन और इस कन्वेंशन के तहत रामसर साइट्स घोषित हुए हैं आपको हमें बताना है कि ये रामसर किस देश का शहर है चले हम इनसे मिलते हैं हेलो
1: जय सियाराम भाई जी
0: जय सियाराम माला जी
1: जी हाँ
0: नमस्कार माला जी
1: नमस्कार भाई जी
0: सब ठीक है
1: सब ठीक है आप कैसे
0: हम ऊपर वाली की कृपा है सो माला जी आप बताएं आपने कभी मैंग्रोव को देखा है
1: जी हाँ जब हम सीसाइड जाते थे
0: हर एक सीसाइड पर होता है
1: नहीं
0: सभी के
1: जो साउथ में है वो वहाँ पर दिखाई देता है
0: साउथ साउथ में कहाँ पर आपने देखा है
1: जैसे कि फ्लैग के बगल में
0: फ्लैग के बगल में आपने देखा
1: जी,
0: है
1: जी हाँ याद नहीं कौन सी सीसाइड पर वहाँ पर देखा जो अब कम होते जा रहे हैं
0: कम होते जा रहे हैं थोड़ी देर बाद में हम और प्रश्न पूछेंगे तब हमको पता चलेगा कि विशेष तौर पर मॉरीशस में 3 विशेष रामसर साइट्स हैं जो संरक्षित हैं जो प्रिजर्व्ड हैं लीगली प्रिजर्व्ड हैं सो आप हमें बताएं कि रामसर शहर किस देश में पाया जाता है
1: ईरान
0: में बिल्कुल सही ईरान में बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज जी
1: धन्यवाद
0: और अगली बार जब आप समुद्र जाएंगे तो मैंग्रोव का थोड़ा और भी ज्यादा ख्याल रखें
1: जी हाँ अच्छा जरूर जय सियाराम
0: जय सियाराम
1: धन्यवाद भाई

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हम पेश करें प्रोग्राम गीत गाथा देश की और आज बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव डे के मौके पर के उपलक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस जो हर साल के 26 जुलाई को मनाया जाता है अर्थात कल यूनेस्को द्वारा अपनाए गए इस दिन का मकसद मैंग्रोव जंगलों को अहम पारिस्थितिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और उनके टिकाऊ प्रबंधन और संरक्षण के लिए को बढ़ावा देना है। की सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स कोस्टल

protection, यानी कि ये जो mangrove होते हैं, they act as natural buffers. जब बाढ़ आता है, जब तूफान आते हैं, तो जो storm surges कहते हैं, और जब सुनामी आते हैं या तो coastal erosion के खिलाफ, तो इन सभी जो risk हैं, इन सब के खिलाफ mangrove बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है. साथ ही साथ they act like carbon sinks, यानी कि they capture and store immense amount of blue carbon जो atmosphere से आता है, तो इस तहत वो climate change को mitigate करते हैं, उसका प्रभाव कम करते हैं. और साथ ही साथ they act as biodiversity hubs. mangrove के जहाँ पर mangrove होते हैं, जहाँ पर ये wetlands होते हैं, वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं, जो crustaceans होते हैं, और जो coastal species होते हैं, उन लोगों के लिए एक habitat बन जाता है. इसलिए mangrove का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है.

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के वेटलैंड्स के बारे में। 26 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस। मॉरिशस में लगभग 144 प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड अर्धभूमि है, जो कुल मिलाकर 1839 में फैले हुए हैं। यह बाढ़ अर्थात सुनामी को रोकने, पानी को फिल्टर करने और कार्बन को सोखने में महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों के तौर पर काम करते हैं। हमारे द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 3 रामसर वेटलैंड्स पाए जाते हैं। हमारे द्वीप पर मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 3 रामसर वेटलैंड साइट्स पाए जाते हैं। आप हमें एक एक करके इन सभी वेटलैंड्स के नाम बताएं। रामसर साइट्स इन मॉरिशस, जवाब देने के लिए आप हमें फोन करें 402-80-70।

0: और साइट्स पाए जाते हैं उनमें से बस एक का नाम आप हमें बताएं, चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, मैं फिर से उमा बोल रही हूँ।
0: यस उमा जी, आपकी लाइन कट गई थी। हाँ, आप बताएं। हम जिस रामसौर साइट की बात कर रहे हैं उनमें से बस एक साइट का नाम बताएं आप।
1: एक साइट, हाँ, ब्लू बे मरीन पार्क।
0: ब्लू बे मरीन पार्क, आप वहाँ पर गई हुई हैं?
1: नहीं, कभी नहीं। वहाँ ब्लू बे इसी साइट गई हूँ, हाँ, पर मरीन पार्क में नहीं गई।
0: हाँ, देखना, जाना चाहिए, जानना चाहिए।
1: मौका नहीं मिला।
0: नहीं, ये बात है कि हम इन चीजों पर बहुत कम ध्यान देते हैं।
1: जी हाँ,
0: जबकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और किस तरह से ये सब मैंग्रोव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं हम नहीं जानते, इसीलिए जानना जरूरी है। इसलिए इन जगहों पर जाना जरूरी है, उनका संरक्षण हाँ। भी ज़्यादा जरूरी है।
1: जी
0: ओके उमा जी,
1: ओके।
0: सो एक है ब्लू बे मरीन पार्क। ये जवाब देने के लिए उमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मॉरिशस। जय मॉरिशस। सो ब्लू बे मरीन पार्क के अलावा और दो ऐसी जगह हैं which have been declared Ramsar sites in Mauritius. आप फोन करके बता सकते हैं 402-435।

सो जैसे हमने बताया ब्लूबे मरीन पार्क को छोड़कर और दो जगह हैं डिक्लेयर्ड आज रामसार साइट्स आप हमें फोन करके बताएं ऑन 402 80 70

गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लाइनों पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को आपका इंटरेस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए। शारदा जी जानना चाहते हैं कि मैंग्रोव को भोजपुरी में किस नाम से पुकारते हैं। आई बी फ्रैंक मुझे खुद पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो आप अवश्य हमें फ़ोन करके बताएं। देविका जी कह रही हैं कि जय सिया राम संजय जी, मैंग्रोव्स आर फाउंड इन बेजुकाप लिमोन आल्सो एट इलोसेफ। हाँ हाँ, आपने सही फरमाया, इन इन जगहों पर पाया जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। जो और दो साइट्स जिनकी हम चर्चा कर रहे थे क्लासिफाइड आज रामसर साइट्स, वे हैं द रिव्यूलेट ऑफ द रूज एंड लिस्चुएर बर्ड सेंचुरी और पॉइंट डिस्नी में। जब आप रास्ता लेते हैं मेबर्ग से ब्लू बे की ओर जाने के लिए, तो पॉइंट डिस्नी जब आता है, पॉइंट डिस्नी वेटलैंड, वो भी एक रामसर साइट है और वहाँ पर बहुत मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। जब आप रास्ता लेते हैं मेबर्ग से, आप जाते हैं विलनोआ से पिची बिलेयर ग्रॉ बिलेयर दुभ्रा आदि दुफ्रेयर कैथ्रसर आदि ईस्ट की ओर, तो वहाँ पर भी ये सब मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं। सो आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था, हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों में एक जागृति पैदा करना, दैट ये सब कुछ हमें इनका संरक्षण करना है, इन लोगों इन मैंग्रोव्स को हमें बचाना है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले आपको बताया, सॉइल इरोजन के खिलाफ जब सुनामी आता है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, तो यही मैंग्रोव हमारा संरक्षण करते हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण के तौर पर इट्स द फोकस इज रेजिंग अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबल कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ मैंग्रोव एनवायरमेंट्स, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम मैंग्रोव को बो सकें। साथ ही साथ एजुकेशनल वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर पाए, और साथ ही साथ जो कोस्टल रीजन्स में वहाँ पर क्लीन अप इवेंट्स आयोजित करें, सफाई करें। आपको तो याद होगा जब वकाशो हुआ था तो किस तरह से उस इलाके में ये मैंग्रोव प्लांट्स जो थे बहुत ही प्रभावित हुए थे। सो आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए ये जागृति अभियान शुरू हो पाए और हम अपने वेटलैंड्स को, अपने मैंग्रोव्स को और भी प्रिजर्व कर पाए। जिन जिन लोगों ने भाग लिया आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। कल 26 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने खूबसूरत मॉरिशस को सुरक्षित रख सकें और जितना आज खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत बना सके। आज के लिए इतना ही काफी, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सियाराम, जय मॉरिशस।

0: इस समय मॉरिशस में शाम के ठीक 5 बजे आप सुन रहे हैं और इम्प्री रेडियो मनोरंजन
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक और इम्प्री
2: पुराने नगमे
0: यादों की दुनिया में चले आइए हमारे संग जी हाँ अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक और जय प्रताप सिंह के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम पुराने नगमे जी हाँ यादों का पिटारा हम लाए हैं जहाँ पर एक से एक अच्छे गीत हम आपको सुनवाएंगे उस जमाने के तब आप उस कहेंगे हमारा भी जमाना था पुराने नगमे प्रोग्राम चुन चुन कर लाए हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें सुनकर आपको अपने बचपन के दिन अपने जवानी के दिन याद आ जाएंगे

Yes, down memory lane. यादों की दुनिया में प्यारी प्यारी यादें हैं, मोहब्बत भरी बातें हैं, और ये पहला नजाना फिल्म राजकुमार से लिया गया है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में दिलरुबा। अब दिलरुबा क्या कर रही है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

एक साथ धड़के हैं।

94.96 98.2 FM पर यह है ऑरम फ्री रेडियो मनोरंजन जी हमारा लाइव प्रसारण एमबीसी मोका से और बेशक शाम का वक्त है सो ये शाम आपको बहुत मुबारक पुराने नगमे प्रोग्राम लेकर हम आए हैं हर शनिवार को प्रोग्राम चलता है शाम के 5 से 6 बजे के बीच ऑरम फ्री रेडियो मनोरंजन और बेशक हम आप में से बहुत से लोग हैं जो पुराने गीतों के शौकीन हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने गीतों में दिलचस्पी रखते हैं अगर ये बातें तो हो जाए और एक तराना दिल की नज़र से ओए होए दिल की नज़र से देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये प्यार क्या चीज़ है

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: Yo, hello. Testing. 1-2.
2: Yeah. कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस,
3: डोंट मिस इट।
4: जी हाँ, वन डे आरजे कंपटीशन शुरू होगा बहुत जल्द। सो टुमारो इज अ डेडलाइन। कल है क्लोजिंग डेट, सो देर से देर 60 सेकंड्स का एक वीडियो आप तैयार कर सकते हैं और भेज सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन बाय वेदिता। एंड बिकॉज वन डे आरजे, कौन जाने एक दिन के लिए आप में से कुछ लोग आरजे बन सकते हैं और हमारी तरह प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं। व्हाई नॉट फॉर वन डे। बहुत से लोग कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। डोंट फॉरगेट, कल डेडलाइन है, यानी कि संडे 26th July इज अ डेडलाइन फॉर सेंडिंग योर वीडियोज ऑन द व्हाट्सएप नंबर। शाम के 5:15। हेलो जी, कई दोस्तों कैसा लग रहा है? इट्स वेरी हॉट टुडे। जी हाँ, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, पर ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार रात के दौरान काफ़ी ठंड हो गया। राइट, ऐसा होता है जब रात को ठंड पड़ती है तो दिन को बहुत गर्मी होती है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले जाती हो, ला ला ला ला ला ला दिल में समाती हो। ओए होए, ये दीवानी जहाँ जहाँ जाती है परवाना उसके पीछे पीछे जाता है। कहीं वो परवाना आप तो नहीं? अरे भाई, ऐसे परवाने को सलाम जो हसीना के पीछे पीछे जाता है। ओए होए होए,

हमसे ना पूछो कि हम आपके कौन हैं हम तो आपके दोस्त हैं जी हाँ जो हमेशा आपका साथ देते हैं रेडियो की लहरों पे लड़का लड़की मिलते हैं बातें होती है जान पहचान होती है उसके बाद लड़का लड़की में दोस्ती दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद शादी शादी के बाद बच्चे और बच्चे के बाद परिवार जान पहचान हो जीना आसान हो हे जी हाँ पहले लड़का लड़की मिलते हैं फिर एक दूसरे का नाम पूछते हैं फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर पूछते हैं उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है SMS क्या बात है क्या बात है सो जान पहचान होना ज़रूरी है अच्छी तरह से जान पहचान कीजिएगा फिर प्यार कीजिएगा कहीं प्यार के बदले धोखा ना मिल जाए किसी के शक्ल पर मत जाइएगा जो भोला भाला दिखता है वो भोला भाला होता नहीं सारा बच के रहिएगा हुजूर

जी हाँ, यह प्रसारण चल रहा है हमारे टिकटॉक पे जब रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन की लहरों पे, और इस समय आप जुड़े हुए हैं

रेडियो मनोरंजन के साथ और टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं। थैंक यू जी। पुरानी नगमी प्रोग्राम, यस, शाम के 5:30 बज रही है और प्रोग्राम जारी है शाम के 6 बजे तक। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। अब आसमान से कौन सा फरिश्ता टपक पड़ा, चलिए जरा उस फरिश्ते से मिलते हैं, प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी एन इवनिंग इन पेरिस। चलिए इस गीत पर थोड़ा सा झूमते हैं और नाचते हैं गाते हैं।

ओ जानना चाहो प्यार है तुमसे हां हां लड़की ने हां हां कहा वरना लड़का अपना गुस्सा दिखाता और कहते हैं कि पति जो होता है पति परमेश्वर होता है स्वामी होता है और पत्नी देवी होती है क्या आजकल की लड़कियां अपने पति को स्वामी मानती है डिपेंड्स पर कहा जाता है धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पति परमेश्वर होता है इसे तो पत्नियां अपनी मांग में पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती है कि नहीं माथे पे लाल बिंदिया और मांग में सिंदूर क्या बात है तुम मेरे स्वामी और अगला गाना फिल्म कामचोर से लिया गया है किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में इस गीत के बोल बहुत अच्छे और इसका म्यूजिक एकदम लाजवाब मेस्मराइजिंग म्यूजिक दिल को छू देने वाली बोल चलिए एक साथ सुनते हैं गाना

दोस्तों दीवाना वो है जो रात दिन अपने दीवाने का तारीफ किया करे, उसका दीदार किया करे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें सागर जैसी है। हाय हाय हाय, क्या कोई इतना तारीफ करता है आपका। शादी के बाद तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखा करते थे वो। क्या क्या नहीं लिखा करते थे, प्यारी प्यारी कविताएं, चिट्ठियां, प्रेम पत्र। शादी के बाद क्या हुआ, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो प्यार मोहब्बत की बातें, कहाँ गई वो प्यारी प्यारी कविताएं। काली तेरी चोटी है पर अंदर तेरा लालनी। आय हाय हाय, क्या बात है। सभी प्यार करने वालों के नाम, ये गाना अनुराधा पौडवाल मंगल सिंह की आवाजों में, फिल्म का नाम है बाहर आने तक।

वाह क्या गाना था, काली तेरी चोटी परांदा तेरा लालनी, ओए होए होए। गीत के बोल जबरदस्त थे और गीत भी बहुत अच्छा था। और कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले अगर लेना है तो दिल से लेना चाहिए, क्योंकि दिल से अगर फैसला ना लें तो देर हो जाती है, तब पछताना होता है। मान लीजिए आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और आपने कभी उसे प्रपोज नहीं किया और कोई और लड़का से प्रपोज कर गया तो दिल की बात कभी दिल में नहीं रहनी चाहिए। दिल की बात कह देने से बनते हैं, दिल की बातों को जुबान पर लानी बहुत ज़रूरी है, कहीं देर ना हो जाए।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

सयोनारा सयोनारा लता जी की आवाज में सयोनारा गीत के साथ ही पुराने नगमे प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। 6 बजे होगा पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद समाचार बुलेटिन सूचने और शोक समाचार, समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी 6:15 इसी चैनल पर। प्रोग्राम होगा नई सोच 6:15 से 7 बजे और 7 से 9 बजे होगा दिलों की आवाज़। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मनोरंजन, और एम्प्री रेडियो मनोरंजन।

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। घर घर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की नई पहल, 3600 परिवारों को मिलेगा लाभ, 75,000 तक की सब्सिडी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। क्यूपिप में मिस्र के राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, मॉरिशस और इजिप्ट के बीच दोस्ती और सहयोग के रिश्ते मजबूत, शिक्षा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा। कम उम्र से तैराकी सीखना पानी में सुरक्षा की पहली सीढ़ी, ड्राउनिंग प्रिवेंशन पर विशेष जोर, द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए जरूरी जीवन कौशल। विदेश में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म, सीजेपी की मुख्य मांग हुई पूरी, सरकार और सीजेपी की संयुक्त घोषणा के बाद हड़ताल वापस। और अब समाचार विस्तार से। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम का आधिकारिक शुभारंभ इस शनिवार क्यूबिप में किया गया। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम खरीदने की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 75,000 रुपये प्रति परिवार होगी। करीब 3,600 परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए पात्रता की शर्त ये है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक योजना, जिसकी औपचारिक लॉन्चिंग क्यूपिप में की गई, 3,600 परिवारों को लाभान्वित करेगी। इस सहायता योजना के तहत घरों की छतों पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% तक की सब्सिडी, अधिकतम 75,000 प्रति परिवार प्रदान।

0: की जाएगी। ये परियोजना सीबी डीबीएम और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरे कहते हैं,
1: Chaque panneau solaire qui vous met l'eau ou toit à la case y amène la croissance. Prenant à peu près 400 mégawatts d'énergie renouvelable, l'investissement dedans.
0: घर की छत पर हर एक सोलर पैनल वृद्धि लाती है। करीब 400 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश इसमें किया जाएगा। करीब 41 बिलियन रुपए का निवेश। इसके सफल होने पर खरीद शक्ति बेहतर होगी, नौकरी पैदा होगी, शिक्षा में संसाधन मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी और समाज सुरक्षा में भी। मंत्री पत्रिका सियावादेन ने ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने के लिए कई कदमों पर बात की। सप्ताह के दौरान चीनी सरकार के साथ 1 बिलियन रुपए की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि और बैटरी खरीद सके, इसलिए ये परियोजनाएं शुरू की हैं। 2026 में हमें जमीन का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की परियोजनाओं को जानना चाहिए। जमीन नहीं होगी तो परियोजनाएं नहीं होंगी। ये एग्रीवोल्टाइक परियोजना कृषि जमीन और सोलर पैनल का मिलन है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सुधार ला सकते हैं, कानून में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि ये परियोजनाएं 1.5-2 साल में नेटवर्क में शामिल हो। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक योजना के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले सेबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद उन्हें डीबीएम से संपर्क करना होगा ताकि वे अपने घर की छत पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सके।
2: मंत्री पत्रिका सियावादेन ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने से कोयले और पेट्रोलियम पैदावार के आयात में बड़ी कमी आएगी, इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। उनको सुनते हैं।
3: Est fiable, coupé, chez OPAC, un service qui nous connaît. Hein? Donc, on ne peut pas disposer à le monde de l'eau pour le domestique là. Mais, ça qui est capable de payer, bien capable de payer. Donc, c'est pour cette raison qu'on trouve sa augmentation qui nous vient là, l'in ciblée à non domestique. Et dans le secteur, il y a capacité de payer une value of water. Valeur de l'eau dans une smart city et valeur de l'eau dans les autres places du monde. Dans Pince, pas pareil. C'est pour cette raison qu'ils m'ont demandé à ce qui, CWA et Wastewater, tous les deux amènent une augmentation qui reflète la réalité du pays après Noaguette ou domestique.
2: तो ये था मंत्री पत्रिक असियावदन का बयान मॉरिशस में पानी की स्थिति को लेकर। कल रात क्यूबेक में मिस्र का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 जुलाई 1952 की क्रांति की याद के साथ साथ ये कार्यक्रम पोर्टवी और कायरो के बीच दोस्ती और सहयोग के मजबूत संबंधों को फिर से दोहराने का अवसर भी बना। इस समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चर्चा का मुख्य विषय शिक्षा और प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में नए अवसर रहे। सामाजिक समावेशन के लिए खेल का सहारा, गरीबी में रहने वाले लोगों की मदद करने वाली लव ब्रिज और सड़क की परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाली सफाइयों ने इस शुक्रवार को क्यूपिप के डॉक्टर जेम्स बटीरा जिमनेजियम में अपने 80 लाभार्थी किशोरों जिनकी उम्र 13 से 15 साल है उनको एक साथ लाया। Empower Zen Zui pour avancer nam se ayojit is karyakram mein football aapasi sahyog aur khud ko behtar banane ki bhavna ko badhava diya gaya।
0: एक दिन के लिए डॉक्टर जेम्स बेटी डेविड जिमनेशियम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए 80 किशोरों के लिए मिलने और बांटने का एक मंच बन गया। फुटबॉल के आसपास इकट्ठा हुए इन युवाओं ने लव ब्रिज, साफिया की टीम्स और स्पोर्ट्स कोचेस द्वारा आयोजित कई गतिविधियों में भाग लिया। लव ब्रिज की प्रोग्राम अधिकारी सांत्रे

0: आचुन कहती हैं,
1: Les deux organisations, on partage la même vision.
0: दोनों संगठनों का एक ही विजन है, युवाओं का सशक्तिकरण. प्रतिभागियों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ आने का मौका मिला, जहां टीम की भावना, आदर और भागीदारी गतिविधियों के केंद्र में थे. मैं यहां अपनी टीम का समर्थन करने आई हूं, साथ में खेल रही हूं. समस्या होती है तो वे हमारी मदद करते हैं, इसी कारण मैं इसमें शामिल हूं. इस सहयोग के माध्यम से दोनों एनजीओज ने अपने लाभार्थियों को एक सामान्य गतिविधि के आसपास इकट्ठा करने की इच्छा जताई, जिससे युवाओं के बीच आपस में विचार विमर्श को बढ़ावा मिले. साफिया के प्रोजेक्ट अधिकारी एडले मोरिया कहते हैं, हमारा मिशन है मॉरिशस में सामाजिक समस्याओं को दूर करना, खासकर बच्चों में. मॉरिशस में ड्रग की समस्या बढ़ती जा रही है. हम इन्हें बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी खुशी मिलती है, समाज में अच्छी तरह जी सकते हैं. हाली बताती हैं कि हम बहुत खुश हैं और बच्चों को साफिया संगठन में शामिल होने की मांग करते हैं. मैंने यहाँ कई दोस्त बनाए. विलियम बताते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, खेलते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं. लवब्रिज और साफिया इस तरह की पहल को जारी रखने का इरादा रखते हैं, ताकि समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके और सबसे असुरक्षित युवाओं के सहयोग को मजबूत किया जा सके.
2: देश के उत्तर महफू में रहने वाली माही सर शापलेन लांजवान पेशे से फाइटो एरोमाटोलॉजिस्ट है. उन्होंने यहाँ पुराने समय या कि एक क्रियोल बगीचे का निर्माण किया है, जहां वे परमाकल्चर के सिद्धांतों के अनुसार सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करती है. वैज्ञानिक और ट्रॉपिकल एरोमाथेरेपी में प्रमाणित मारिसल शापलेन लांजवान 44 साल बाद मॉरिशस लौटी है. उनका उद्देश्य आम लोगों को मॉरिशस के पारंपरिक औषधीय पौधों से फिर से परिचित कराना है. कम उम्र से ही तैरना सीखना पानी में सुरक्षित रहने का सबसे प्रभावी तरीका है. स्विमिंग पूल में शुरुआती अभ्यास से लेकर खुले समुद्र में पानी की गतिविधियों तक स्विमिंग की अच्छी समझ धीरे धीरे और प्रशिक्षकों की निगरानी में विकसित होती है. वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के अवसर पर इस महत्वपूर्ण कौशल पर विशेष जोर दिया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे द्वीप पर रहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है. और 18 जुलाई से प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी छुट्टियों पर है. ये एक बहुत इंतज़ार की जाने वाली अवधि है, जो छात्रों को कई महीनों की पढ़ाई के बाद आरंभ करने और एक ब्रेक लेने का मौका देती है. खेलकूद, परिवार के साथ समय बिताने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जैसी गतिविधियों के बीच हर कोई अपने खाली समय का आनंद अपनी पसंद के अनुसार ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे द्वीप में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जारी रखे हुए है. इस अभियान के तहत आज शनिवार को त्रिबिका की पार्किंग में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. ये दिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की स्क्रीनिंग के लिए समर्पित था, ताकि लोगों में समय पर जांच और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके. ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में.
3: डायबिटीज के लिए जांच, मोटापे और ब्लड प्रेशर के लिए भी संतुलित भोजन के लिए सलाह. स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल ने कई लोगों को आकर्षित किया, जिन्होंने शनिवार की सुबह कुछ समय अपनी सेहत के लिए निर्धारित किया. गत साल फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी की, मुझे इसका पता नहीं था, अब पहले ही मुआयना करना पसंद करती हूँ ताकि सावधानी बरत सकूँ. अपनी सेहत के लिए सजग हूँ. यहाँ सभी सलाह मुफ्त में प्राप्त हुई. साथ में गर्भाशय के पोलिप और स्तन कैंसर के भी जांच कराए. जांच करानी चाहिए ये जानने के लिए कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज आदि की समस्या है या नहीं. इस तरह सावधानी बरत पाएंगे. ये गैर छूट की बीमारी की जांच का तीसरा सत्र रहा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर रही. डॉक्टर दाविना सुप्रायन झगड़ू ने कहा, एक ही जगह पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, खासकर निरोध सेवा. NCD हेल्थ प्रमोशन यूनिट द्वारा मुआयना किया जा रहा है. मुफ्त में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटेरस कैंसर, स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट भी हैं. गर्भवती

0: व्यक्ति होने की चाह रखने वाली महिलाओं को सलाह दी जा सकती है। होम रिडक्शन यूनिट भी है। ड्रग्स अल्कोहल लेने वाले लोग जो अपना पुनर्वास चाहते हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में देश के अन्य इलाकों में भी इस तरह के सत्र लगाए जाएंगे।
1: स्थानीय रचनात्मकता को बढ़ावा देना और हमारे युवा कलाकारों को पेशेवर बनाना पायोज के सौंद फॉर्मेशन आर्टिस्टिक ने आज सुबह फेनिक्स के इंदिरा गांधी इंडियन कल्चरल सेंटर में अपना ओपन डे और प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कला की विभिन्न विधाओं में उनके काम को सामने लाने का अवसर था। इस अवसर पर कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया, जूनियर मंत्री वेरोनिक ले कोविन और भारत की उप उच्चायुक्त अपर्णा गणेशन भी उपस्थित थे। विदेश में भारत के कॉकरोच प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये घोषणा आज शाम सरकार और सीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। ये फैसला धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी की सबसे प्रमुख मांग थी।
0: कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की और दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद अपने समर्थकों से घर लौटने की अपील की। ये घोषणा आज शाम आयोजित एक संयुक्त सरकार सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आया, जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी की प्रमुख मांगों में से एक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष राका, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करते हुए और सद्भावना के आधार पर आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनकी एक प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लिया जाएगा, भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और नीट पेपर लीक मामले के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 points था, उसका लबोलबाव ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों में सख्त प्रावधान और कड़े दंड लागू करने के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
3: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
0: उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत प्रस्तावित कानून में फर्स्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त

0: समाप्त कर दिया है जो उन्होंने हिंसा के खिलाफ शुरू किया था।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
2: देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
3: उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज रात मौसम अच्छा रहेगा, धीरे धीरे बादल घिरेंगे। उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को ऊंचे इलाकों और दक्षिण पूर्व में बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह 6:42 पर सूरज निकलेगा।
2: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान और नीतूषा का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
4: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू के लिए फोन नंबर 1 फिनिक्स में, जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू के लिए फोन नंबर 1 फिनिक्स में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री सुंदत कुनाय, श्री सुंदत कुनाय जो कुनाय नाम से ज़रा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू के लिए फोन नंबर 1 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1:30 PM मागोन स्ट्रीट पोर्टवे में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिसिज बीबी रुकाया राजा जो रुकाया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कुछ ही समय पहले यानी आज शाम सवा छः बजे मागों स्ट्रीट पोर्टवी के ला सोसाइटी अल ईसाना से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्तिया के कब्रस्तान ले जाया जा रहा है। फिनरल टुडे एट 6:15 PM नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन बोबासामी, नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन बोबासामी 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश गोबिंद सिंह जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन वो बबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM एवेन्यू जनकिनी दिवाकुआ में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीरा आपाजी पैदाइशी नाम गनू और जो मीरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती सोबा सुनू के घर एवेन्यू जनकिनी दिवाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिल्वी अग्नि वाकुआ की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM रॉय रोड बबासमी 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री डॉक्टर विनोद बालगोबिंद की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम चार बजे रॉय रोड बबासमी के लाशा पेलाउदोंट इलियनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोवियो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 4 PM टैगोर रोड खाम ग्रुप में सप्ताह गुरु खोंगुक में 88

साल की एक टी एक टी जोर की श्रीमती आसमुन तिलकचन, श्रीमती आसमुन तिलकचन पैदाशी नाम गुहा, पैदाशी नाम गुहा जो कृष्णावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मृत्यु हो गई है उनकी थी कल सुबह दस बजे। उनके बेटे श्री आर्यदत्त तिलकचन के घर टागोर रोड खोंगुप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंगुप की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। कारोलालियन वाकुआमी 65 साल की 65 years old की श्रीमती धनमावती लक्ष्मा, श्रीमती धनमावती लक्ष्मा पैदाशी नाम रासुकुल, पैदाशी नाम रासुकुल और जो नलिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो LIC के एक पूर्व कर्मचारी थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री लक्ष्मा शिवचरण के घर का हुलालियन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Continuous music. RM3.
1: Nasal.
2: ये है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का म्यूजिकल चैनल और एम फ्री रेडियो मनोरंजन। स्वीकार कीजिए अपने हौसला दोस्त प्रताप सिंह का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। और शाम के 6:25 हो रहे हैं, अभी से लेकर रात के 7 बजे तक कुछ फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स नई सोच प्रोग्राम में। उसके बाद 7 बजे होगा दिनों की आवाज़, 7 से 9 बजे के बीच सम डिस्को पैपी सॉन्ग्स। जी हाँ दोस्तों, जीने के तो बहुत सारे बहाने, बस आपको अंदाज होना चाहिए कि ज़िंदगी को किसी नए सिरे से जीना चाहिए। अगर एक बार दिल टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है, इंसान रूठ जाता है, उदास हो जाता है, पर उदास होने से आंसू बहाने से क्या मिला इंसान को? कुछ भी तो नहीं। कायर होता है, बुजदिल होता है वो इंसान जो रोता रहता है। पर अगर कोई आपका दिल तोड़ दे तो आपका हक है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से ले जाएं। जीने के बहुत सारे बहाने हैं दोस्तों, आपको बस एक बहाना मिल जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाए।

दुनिया का दस्तूर है दूसरों का मजाक उड़ाना दूसरों की हंसी उड़ाना पर वो भूल जाता है कि जब कोई उसका मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है बहुत बुरी बात है जो इंसान दूसरों की निंदा करता है चुगली करता है दूसरों की बुराई करता है वो भूल जाता है कि वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है और ऐसे पाप को भगवान कभी क्षमा नहीं करते

कभी-कभी जो कोई बलवान होता है शक्तिशाली होता है वो अपने आप पर बहुत गुरूर करता है घमंड करता है रावण जैसे व्यक्ति का घमंड नहीं रहा तो हम तो आम इंसान है फिर इतना घमंड इतना गुरूर क्यों और जो बलवान होता है निर्बल से लड़ता है पर वो भूल जाता है कि निर्बल का साथ भगवान देता है और भगवान निर्बल को हर हाल में बचा ही लेता है

ये कहानी है दिए और तूफान की, और दिए की जीत हो ही गई क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। जो बलवान है वो बहुत गुरूर करता है और उसका गुरूर एक ना एक दिन टूट ही जाता है। घमंड इंसान का एक ना एक दिन उसे नीचा दिखाई देता है। और कहते हैं दोस्तों कि जब कल का पता नहीं तो हम भविष्य के बारे में क्यों सोचें? क्यों सोचें कि आने वाले पल में हम क्या करने वाले हैं? ये सोचें कि जो पल अभी बीत रहा है इस पल में हम क्या करेंगे? आने वाले पल में क्या होना है ये तो भगवान ही जानते हैं। पल जो पल में यहाँ से क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं खबर। बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़े पंडित आचार्य इस बात को नहीं बता पाते कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। वेल, जो भी होगा अच्छा होगा, होने को कोई रोक नहीं सकता। न कल का पता है न आज का पता है, सो जो पल चल रहा है उस पल में आप जी लें।

यहां पल टू पल में रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। जो कोई अपना होता है वही बेगाना हो जाता है, जो बेगाना था बेगाना होता है वही अपना बन जाता है। पता नहीं क्यों आज रिश्ते नाते इतने जल्दी बदल रहे हैं। समय जैसे बदलता है वैसे ही रिश्ते नाते बदलते हैं। इसीलिए आजकल परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस संसार से परिवार लुप्त हो जाएगा।

माँ तो जननी है, माँ तो देवी है, माँ है तो पूरी दुनिया है, माँ नहीं तो दुनिया अंधेरी है। इसी भाव गीत के साथ ही भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम फिलोसफिकल सॉन्ग्स का प्रोग्राम नई सोचें पर संपन्न होता है। दो मिनट में सात बजने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू ऑल एम्प्री रेडियो मनोरंजन। अगला प्रोग्राम होगा नाचने गाने का प्रोग्राम। यस, दिलों की आवाज, सम फॉक्स, पैपी सॉन्ग्स, डिस्को सॉन्ग्स रात के 7 से 9 बजे के बीच। आप एसएमएस कर पाएंगे, फोन भी कर पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

Ladies and gentlemen, guys and girls, check out your time. इस समय मॉरिशस में रात के ठीक 7 बजे हैं. 94.95.698.2 FM पर आप सुन रहे हैं MBC और एम प्री रेडियो मनोरंजन.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सांसराज के हमारे प्यारे दोस्त एक बार फिर स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। रात के 7:02 हो रही है। टुडे इट्स सैटरडे नाइट 25 जुलाई 2026। नाचने गाने की रात है, मस्ती करने की रात है। ये धूम धड़ाका म्यूजिक, लेट्स नाचो। दिलों की आवाज अभी से लेकर रात के 9 बजे तक फास्ट म्यूजिक डिस्को सॉन्ग्स आप लोगों के नाम। इट्स पार्टी टाइम ऑन द डांस फ्लोर ऑफ रेडियो मनोरंजन। फोन कर सकते हैं 4028070 या SMS कीजिए 5252500 पर। SMS करने का नंबर 5252600 या फोन करने का नंबर 4028070।

0: 8070. ये तो आप जानते हैं कि अभिजीत बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, जी हाँ, वो मॉरिशस में हैं और वो अपना ग्रैंड कंसर्ट दे रहे हैं आज रात 7:30 at SVICCPI. So वो मॉरिशस में हैं. वेलकम सर जी, आपका स्वागत करते हैं. वेलकम टू द पैराडाइज आइलैंड ऑफ मॉरिशस. अभिजीत साहब ने बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है और आज भी दे रहे हैं. चलिए, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर हिज ग्रैंड कंसर्ट फॉर टुनाइट. यानी कि अभी से आधा घंटा आधे घंटे में उनका शो होगा. सो दिस गाना अभिजीत की आवाज़ में, तेरे आँखों का दीवाना, सुदेश जसवाल. यस, यू आर द रियल ग्रेट फैन ऑफ अभिजीत साहब. सो ये गाना आपके नाम सुदेश जसवाल की माँ है राजकुमारी. ये गाना जाएगा दादी प्रभावती और नुवेल फ्रांस, उनके बेटे बहू बेटी दामाद और सब लोल परिवार के नाम. डॉक्टर राकेश रामचंद पेनमायों से हैं. ये गाना आपकी पत्नी, आपके दो बच्चे और सब रामचंद परिवार के नाम. संगीता मिरन लाखोसा से है. ये गीत आपके लिए और आपकी माँ के नाम. कास्टल रहती है आपकी माँ. फिर आपके दो भाई है दान आजी, बहने हेमा शांति, वंशिका रक्षिता एंड ऑल अमीरन मोहन परिवार. चित्रन ज्ञान विश्राम जी, ये गीत आपके नाम भी, आप मौदालबे से है. आफिज हेलाविनिया सैपिया से, अनिता फ्रीगों फ्लाक, अनिता लाल जी अब मौदालबे. और यहाँ पर एक दोस्त है, अमन से मिलने की कोशिश करेंगे. Try to be short and sweet, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं. हेलो,
1: हेलो, नमस्ते.
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मैं सीता हूँ, पुएर्टो रिको से.
0: आपका स्वागत है सीता जी, बोलिए. आपका स्वागत है, बोलिए.
1: हाँ, फिल्म है संगम, हर दिल जो प्यार करे.
0: नहीं, आज हम सब फास्ट म्यूजिक चलाए, डिस्को म्यूजिक. कोई डिस्को गाना हो तो मांगिएगा, हम जरूर चलाएंगे. ठीक है, आज का थीम है डिस्को.
1: कोनो गीत में डाल दिया नाम.
0: ओके, सो ये इस गीत में किसके
1: सब भाई बहन खातिर.
0: ओके,
1: हाँ, हर दिन स्प्रे करते रहिए, हमार गीत नहीं मिलल.
0: कौन सा गाना आपने मांगा था? कौन सा गाना आपने मांगा था?
1: दिल में तेरे याद सन.
0: नहीं तो वो डिस्को, डिस्को गाना नहीं था ना. सैटरडे को डिस्को चलता है.
1: वो दिन डिस्को के नहीं था.
0: नहीं, सैटरडे को डिस्को ही चलता है. ठीक है, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया. यही हम कहते हैं कि आप लोग ध्यान से कभी सुनते नहीं है प्रोग्राम, ध्यान से सुनिए. आज सब हम जो गाने लाए हैं सब डिस्को है, उसमें फास्ट बीट है, पेबी सॉन्ग्स है. ऑलराइट, सो चलिए यह डिस्को भरा गीत आपके नाम करते हैं सभी रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम. दीवाना, मैं तेरा दीवाना. Let me remind you, SMS करने का नंबर 5250 पर 5250 6200, फोन करने का नंबर 4028070.

कहते हैं दोस्तों कि ये जरूरी नहीं कि आपके बहुत सारे दोस्त हो, एक ही दोस्त हो बस वही काफी है। एक ऐसा दोस्त जो तन मन धन से आपको अपना माने और जो दुख के समय में आपका साथ दे। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड। अगला गाना सैया जी भैया छोड़ा के नहीं जाना ए ए, ए, ए, ए, ए। ये प्यारा सा गाना हम चलाएंगे मनीष और चामी सिंह जी के नाम, उनकी पत्नी, उनके तीन बच्चे, उनकी माँ और सब चामी सिंह परिवार के नाम। और यही गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप है रिति शमान, आदित्या चाटुआ, अनीता पांचू, अंजू किशन, आश्रय चितंकी, अजीजा बालगोबिन। यही गाना जाएगा भाई गुरु जो साउथ अफ्रीका में है, भामा भारती, भारती जी के नाम, बुलाकी, बृंदा पांचू, शकीर, प्रयाग सिंह, कोथन, देवी, दीना, टीना, गिरीश, लक्ष्मण, गनु, हंस, विशाल हीरू, शालिनी हीरू, उनके दो बच्चे और पूरे परिवार। हिरीश नारायण मिडलैंड से है, उनके पापा, उनके मामा के नाम, कलाईवानी, केशव रिसोल, महादू, मालिनी दौलत, माया महाबीर, मिस बैनी, साइरिश महाबीर, मिस्टर अरविंद गंगा, नवीन चानकी, मिस्टर परमानंद सूर्यानंद, प्रवीण बुधन, उनके परिवार, प्रीति बाबुआ, उनके पति और बच्चों के नाम, प्रीतम भैरव, राधा गनु, रीता, रोशन हरनाम, रोशनी बिहारी, रोसाई रिसोल। यही गाना जाएगा संजय हरिचरण के नाम, संजय बिहारी, उनके परिवार, सत्यम सुबोल, उनकी पत्नी और बच्चों के नाम, शायरन बंसी, यही जाएगा आपकी पत्नी, आपके बच्चों के नाम, शामिनी, सिदिक, सरजू, तैयबा उजागिर, उमा जगनायकलू, उरुसा, वीरापेन, विकास, विनी, सुबान, विश्वानी बाबूलाल और वियासियो के नाम, विदाउट फॉरगेटिंग नटराज, राम कोरन। सो ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी अपनों के नाम जोड़ना चाहते हैं ऑन द फास्ट पैपी म्यूजिक तो हमें SMS कीजिए यस 5250600 पर, सेकंड डिजाइन कौन सा 00 पर, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028070 पर। एक SMS है यस अगला गाना हम चलाएंगे फॉर सचिन ऑफ पॉम्पलेमूस, ये गीत आपके नाम भी जाता है। चलिए एक साथ सुनते ये गाना, सैया जी भैया छोड़ा के नहीं जाना। You want to dance? You want to sing with us? Yes, you're most welcome. Radio Manoranjan, Dinong Kiawas.

0: Yeah.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।
3: Here we go.

0: गाना खत्म, पैसा हजाम।
1: चुप रहो वरना जतारा आ जाएगा। That was a wonderful track from the movie Welcome to the Jungle। हाँ जी हाँ, पैसा पैसा, किसको पैसा पसंद नहीं, सभी को पैसा पसंद है। दोस्तों कहते हैं कि जो कल करी सो आज कर, जो आज करी सो अब, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, हमने तो कल नहीं देखा। अगला गीत, दिल में बजे गिटार। यस, वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी अपना सपना, मोनी मोनी। ये गीत हम चलाएंगे प्रीति और रेशमा माता बदल जी के नाम, प्रीति रोजबेल, उनकी माँ इंद्रानी, पापा सुरेश, सब माता बदल परिवार के नाम। ये गाना जाएगा लोंग, चिबुक, राजा, स्टीव, संजीव, प्रवीण भैरव, श्याम मंगल और राजमाना के नाम। और ये सभी लोग बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं। नानो, ये गीत आपके नाम भी जाएगा बहुत बहुत प्यार के साथ, दिल में बजे गिटार। आशा जानू फ्रॉम कॉटेज, शुभम, मामा कुमारी, दीदी आरती, जीजाजी और सब जानू परिवार के नाम ये गीत जाएगा, दिल में बजे गिटार। SMS करने का नंबर याद है ना, 52 51 70 00। फोन करने का नंबर 4028 070। पार्टी टाइम ऑन रेडियो मनोरंजन, दिलों की आवाज़, रात के 9 बजे तक अजय प्रताप सिंह के साथ।

दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, ये जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचती है। बी हैप्पी व्हाटएवर यू आर, जो भी है जैसे भी है आप अच्छे हैं। नो वन हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज यू, नो वन हैज अ राइट टू मेक फन ऑफ यू, बिकॉज यू नो हु यू आर। मैं तो वैसे ही जीता हूँ, लोग चाहे कुछ भी कहे मेरे बारे में, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। आई लिव माय लाइफ द वे आई विश एंड आई एम हैप्पी। आपको भी हैप्पी होने का, हर किसी को हैप्पी होने का जो है हक है। नो वन हैज द राइट टू हर्ट यू, टू मेक यू क्राई, ऑलराइट। जी हाँ, आपका क्या होगा जनाबे अली, हाउसफुल फिल्म का गाना चलता हुआ आ रहे हैं और ये गाना जो हम चलाएंगे सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम जो स्कूल हॉलीडेज में है। हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्शन। यस, और ये गाना चलेगा सेंट ओबेसेस एस कॉलेज के इन दोस्तों के नाम, मिस्टर वीरापेन और उनके परिवार, मिस्टर साजू, मिस्टर धर्म गंगू, मिस्टर रुसाय, मिस्टर अपाया, प्रतिमा, केत, टीना, दीना and the whole staff of Saint-Aubin SSS. Premila Katrabon se hai, ye gana chalega. Riya, Yash, Leena, Sailesh, Vidya, Pravesh aur sab isi sar parivar ke naam. Aur yehi pyara sa gana hum chalayenge Sanjay Bihari ki aur unke patni Surekha, beta Kushal, Bahu, beti Rinku aur sab Bihari parivar ke naam. And without forgetting Madhav, to his chacha Silent aur sacha Silent ki aur unke nephew

माधव की नाम चाचा और भतीजा का ये प्यार यूं ही बरकरार और बना रहे। रीता की ओर से जाएगा ये गीत उनकी दो बहनों के नाम अमृता रेणुका और फिर उनकी पोती अनुष्का और सबसे तालु परिवार के नाम। चलिए साथ सुनते प्यार से गाना। ये गीत उन सभी लोगों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर। फोन करने का नंबर 4028070, SMS करने का नंबर 7200 पर। Yes, people on the floor, dance floor, radio Manoranjan. It's party time.

0: पहले का जमाना कुछ और था दोस्तों और अब का जमाना कुछ और है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ फास्ट फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया। द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है कि नहीं। अगला गाना मीट मी डेली, यस मीट मी डेली बेबी, फिल्म का नाम वेलकम बैक, बहुत ही प्यारा सा गाना। और ये गीत हम चाहेंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए। यस रिहाना ऑफ नोटरडम, हेलो जी भाई अबू वाकवा से, हेलो भाई अबू सलाम वालेकुम, कैसे आप? ये गीत आपके नाम, भाभी और बच्चों के नाम, राफिक मोहित और उनके पूरे परिवार तायाक से है। रोजीदा फ्रॉम हाईलैंड्स हाय, इब्राहिम ऑफ पोर्ट्रीज, फातमा ऑफ न्यूग्रव, उदय धनीराम ऑफ यूजपर्स, प्रीतम राजमिला, केशव अबिलक और सब बच्चन परिवार यूजपर्स से विक्रम निफो। और हमारा टिकटॉक पेज अभी एक्टिव है समय, सो आप हमें देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर। सो जितने भी लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं और रेडियो पर सुन रहे हैं, गीत आपके नाम मनोज पियातिया, यह गीत जाएगा आपके नाम एस 2022 आरती जी, ये गीत आपके नाम भी जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, विदुषी भी हमारा साथ दे रही है, थैंक यू विदुषी। सो बेशक आप अपने SMS टिकटॉक पर भेज सकते हैं ऑन द पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन। लीनो फिडेल भी हमारा साथ दे रही है, हाय लीनो, यह गीत आपके नाम भी। तो प्रीतम कुमार बलाराम भी हमें फॉलो कर रहे हैं, सो गीत आपके नाम भी जाएगा, बेबी मीट मी डेली, कम ऑन।
1: चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो।
0: जी हाँ, चलाओ नैनों से बाण, वो चलेगा बाद में, अभी के लिए मीट मी डेली। यस, ये गाना सुनेंगे हर्षा सक्सेना, पौनी पांडे और हिया सिंह डिसूजा की आवाजों में। लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक, लेडी जागो, यह गीत आपके नाम भी। यू आर हैप्पी लेडी, रवि दिनु साहब, यह गीत आपके नाम भी। कम ऑन रवि, लेट्स डांस। शिन वसन, यह गीत आपके नाम, और दाव, यह गीत आपके नाम भी।

Baby Meet Me Daily, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे. All the sweet ladies and girls listening to me right now, that is for you. चलाओ ना नैनो से बानरे. बबीता नेमन ये गीत आपके नाम जाएगा, संजय बुधवाई गीत आपके नाम, इब्राहिम रॉस ये गीत आपके नाम भी, ये गाना जाएगा डेबी नाच के नाम. हेलो रीना बिकारी, गुरुदेव मन्ना कैसे है भैया, ये गीत आपके नाम, पूरे परिवार के लिए लवना की ओर से गी जाएगा, उनकी सासू माँ इंद्रानी बिगू और फोंजुसाक. जी हाँ, ऑलराइट. केशनी फ्रॉम इटली, हाय केशनी कैसी है आप, हम तो ठीक ठाक है, एकदम मस्त है और आपका साथ दे रहे हैं. और फिर यही गाना जाएगा गीता रघुबर के नाम. ऑलराइट, सो यू एस एम एस ऑन टिकटॉक और रेडियो मनोरंजन एंड 4028070. यस मातक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिया पुरन हेलो, ये गाना आपके नाम जाएगा. कविलन ये गीत आपके नाम भी, और फिर यही गाना जाएगा जिया के नाम, हाय जिया ये गीत आपके नाम, एंड यही प्यासा गीत सेविश बाबुआ के नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और जितने भी लोग इस समय हमें रेडियो पर सुन रहे हैं और टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, प्रेमानी सुब्रन यह गीत आपके नाम भी जाएगा. ईश्वर सुबन मोहताबाद से उनकी पत्नी, उनके बेटे बहू बेटी नामाद और सब परिवार के नाम. युधिष से उधारी यह गीत आपके नाम भी जाएगा बहुत बहुत प्यार के साथ. और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश नारायण साहब, जी हाँ गीत आपके नाम, हाय रवि ये गीत आपके नाम भी जाएगा.

इस दुनिया में कौन सच्चा बोलता है कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है पता ही नहीं चलता बहुत ही अजीब है ये दुनिया और यहाँ के लोग पल दो पल में वो आपके दोस्त बन जाते हैं पल दो पल में लोग आपको भुला देते हैं सो सैड और अगला गाना चलेगा चोली के पीछे क्या है फिल्म खलनायक मूवी का गाना और ये गाना जाएगा हिरीश जी के नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेलो हिरीश और फिर ये गाना जाएगा मंगल के नाम कविता आप देव खैर से है शैलेंद्र जी ये गीत आपके नाम भी जाएगा दौलतरन नमस्कार जी ये गीत आपके

पूरे परिवार के लिए संजय बुधवा, ये गीत आपके नाम भी जाएगा। हाय हेलो डिंपल, वशिष्ठ सराथी, फिर उनकी माँ, उनके पापा और सराथी परिवार के जीपोस से है। आपके बेटे सातवें कॉलेज में पढ़ते हैं, सातवें सक्सेस हो। यह गीत आपके नाम भी बहुत प्यार के साथ जाएगा। आरती जी हमारा साथ दे रही है। हेलो आरती। यस एंड आरती, लेट मी टेल यू, नेवर गेट डिस्करेज इन लाइफ। जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारे, हौसला ना हारे, होता है कभी कभी जिंदगी में।

in life, but be courageous, be bold, and you will truly succeed if you have strong willpower. Indira ji hamara saath de rahi hai aur Hirish Narayan jo hai muskurate hue program ko sun rahe hain. Kya baat hai Hirish ji, lagta hai koi aapko pasand aa gaya hai. Indira ji, ye gana aapke liye, Rajesh Ugar ke sab Ugar parivar ke naam, and for Prakash also. Hello, Moham ji, Atisha, sweet and lovely Atisha. Hello, hi Nazma, Anusha. Hello, Nazma ji. और ये गीत आप सभी के नाम जाता है जो हमें सुन रहे समय रेडियो की लहरों पे एमबीसी रेडियो मनोरंजन एंड टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन पर जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यह गीत आपके नाम भी. म्यूजिक चल पड़ा आकाशनिक ईला अरुण की आवाजों में. फिल्म का नाम है खलनायक.

Man, dil hai mera. That was a track from the movie Khalnayak. Raat ke 8 baj ke 3 minute ho rahe hain. Dilon ki awaaz on 94.9 FM par Radio Manoranjan. MBC ka musical channel hai ye. Agla gana Pyar Mera Kho Gaya from the movie Dance Dance. Kehte hain dosto ki har insaan se galti hoti hai. Galti karna ek swabhavik si baat hai. पर जब बार बार इंसान गलती करे और बार बार वो माफी मांगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर एक बार गलती करे दो बार करे तीन बार

इट्स ओके, यू कैन फॉरगिव, बट चार पांच बार और बार बार गलती करे देन इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगिव, बट फॉरगिव इज डिवाइन, है ना, टू फॉरगिव इज डिवाइन. अगला गीत इंदिरा जी के नाम, हेलो जी, ये गीत आपके नाम जाएगा. एंड ये गाना खासकर इंदिरा जी के नाम, राजेश गौर सबुगा परिवार के नाम, प्रकाश जी के नाम भी, और यही गाना अंजू के नाम, अनिता चैन की पौसाद, यह गीत आपके नाम भी. जी वी हेलो, संजय बुधवा, यह गीत आपके नाम जाएगा. भाग्य नारायण जी, दिस गाना फॉर यू. एंड फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लवना, ये गाना उनकी मामा आशा सब फकीर परिवार पिछड़ाफे से, और मौसी छाया के नाम भी जाएगा. यह गीत कैलाश पुजारा के नाम, प्रतिमा बंसुगावा, गीत आपके नाम भी. संगीता माधुरी, किशोर जी, मनोज पैतिया, यह गीत आपके नाम, और सब सेबास्टोपोल के पैतिया परिवार के नाम. राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांति दूधी. फिर अंजू कनाडा से, हाय अंजू, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, आशा करते हैं सब ठीक ठाक है कनाडा में. और चलिए बढ़ते हैं और एक नाम की ओर. हाय हिना वोइडा, हेलो, आई एम फाइन, आप कैसे हैं वोइडा. और फिर आन हमारा साथ दे रही है, आन आई एम रियली सॉरी वी कॉन्ट डू लाइव हियर बिकॉज अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज़ इस पर फ़ोन ना करें, टिकटॉक पेज पर मैसेज भेजें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ऑलराइट, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, थैंक यू. और यही गाना मनु के नाम, और रवि साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, चलिए एक साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना, रिम झिम सावन.

दोस्तों आपका औलाद जैसा भी है वो आपका अंश है आपका खून है आप अपने औलाद को कभी ना ठुकराएं क्योंकि अंत समय में कोई साथ दे या ना दे बस एक उम्मीद रहती है कि आपका औलाद आपका साथ देगा आपके अंत समय में है ना और बेटा जब अपने पिता के अर्थी को कांधा देता है तो सबसे बड़ी बात होती है यस सोचने वाली बात है रात के 8:12 थैंक यू फॉर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन और हमें टिकटॉक पेज पर देखने के लिए शुक्रिया अगला गीत ये धुआं महालक्ष्मी की आवाज़ में गीत आप सुनेंगे आंजी के नाम ये गीत जाएगा फिर यही गीत जाएगा एक महिला के नाम उनकी हबी है विनय दो बच्चे और उनके भाई और शकी अज के नाम भी माया रामदोस जी हमारा साथ दे रहे हाय माया यह गीत आपके नाम भी जाएगा सरिता दास यह गीत आपके नाम भी कविता जी बेगम नूरदारी भी हमारा साथ दे रही हैं थैंक यू हमारा साथ देने के लिए हमें देखने और सुनने के लिए ये गीत जाएगा रोशन साहब के नाम हाय रोशन दिस गाना फॉर योर बेस्ट फ्रेंड कवि और यही जो गीत चलेगा बहुत ही प्यारा सा गाना ये गाना चरण से भी दोस्तों का नाम जिस समय नाइट शिफ्ट में जुड़े हुए काम कर रही है बोंकुआश कहते हैं और माया राम दोस्त बहुत खुश है मुस्कुरा रही है और मैं थैंक यू कह रही है क्या बात है मेंशन नॉट माया जी ये प्रोग्राम आप लोगों का है अगर आप हैं तो ये रेडियो है अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं कि नहीं सो इट्स वेरी स्वीट टू बी विद यू माया जी इस समय आप हमारा साथ दे रही है हमें सुन रही है प्रोग्राम को एंजॉय करिए चलिए अच्छी बात है भरत सीता जी यह गीत आपके नाम भी जाएगा चलिए एक साथ सुनते हैं कि प्यारा सा गाना

0: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: बुरे वक्त में जो आपका साथ छोड़ देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और बुरे वक्त में जो आपका साथ देता है उसे हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। और बेशक बुरे वक्त में तो बहुत से लोग साथ छोड़ देते हैं, कम ही लोग होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं। सो ऐसे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए क्योंकि दुख के समय में जो काम आता है वही लोग हमारा परिवार, हमारे परिवार होते हैं। यस, और अगला गाना छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैजनिया रे छम्मा छम्मा। स्पर्वीन ये गीत आपके नाम जाएगा, स्पर्वीन यूके से। हेलो जी, यूके में जितने लोग हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं, यह गीत आपके नाम। हाय विदुषी, हेलो जी, कैसी है आप? एंड समवन हैज पुट हिज नेम एम्बापे। ओके, नमस्ते चाचू, नमस्ते बिट्टू, कैसे हो? और एम्बापे कहाँ से हो तुम? प्रिंस सलीम भी हमारा साथ दे रहे हैं, सेर्ज, सेर्ज जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो ट्विंकल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रीत, प्रीत भी हमारा साथ दे रहे हैं। हाय शिखा, हेलो जी। वरुण गणेश भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। और थ्रियोले से है महाराणा प्रताप, थ्रियोले थ्रोबी से है सब हर को परिवार, कलकतिया परिवार, एंजारी परिवार। और निर्पल झरी ब्रिटानिया से, हेलो जी, ये गीत आपकी पत्नी, आपके बच्चे और पूरे परिवार के लिए। वीना कुबुसामी मेबर्ग से है, हेलो। और सुलमान दुखी वहीं से है। फिर विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से है, ये गीत आपके नाम जाएगा। और एम्बापे के नाम भी झड़ी चलाते प्यारा सा गाना छम्मा छम्मा बजर तेरी पैजनिया।

दीवानी दीवानी दीवानी ये थी प्रीति जिंटा यस पिक्चराइज ऑन प्रीति जिंटा बहुत ही प्यारा सा गाना अनु मलिक अनैदा की आवाजों में रात के 8:40 वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए सत्यन जी है सत्यन आप है फिनिक्स से हमें सुन रहे हैं थैंक यू जी आपकी दो बेटों के नाम अगला गीत जाएगा तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरे गाल बल्ले बल्ले जी हाँ सत्यन जी की ओर से और सभी खुशीराम परिवार के नाम यह गीत जाएगा फ्रॉम द मूवी सोल्जर ये प्यासा गीत हम चलाएंगे अनुजी के नाम अनुजी वाकवा से है हाय अनुजी प्रेमिला जी काटोबोन से बहुत प्यार से हमें सुने शोभा वाकवा से शोभा पॉम्पलेमुस से और पॉम्पलेमुस की शोभा जो है मुस्कुराती हुई लहराती हुई बस हमें सुन रही है और कह रही है कि प्रताप जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है कनाडा से है हमारे दोस्त जी हाँ दीपा तिवारी दुखित उनके पति केविन उनके बेटे और सब दुखित परिवार के नाम जो कनाडा में है ऑस्ट्रेलिया में है अजय और पूनम चिंदाराम उनके बेटे बाल गोपाल मॉरिशस में उनकी माता जी है इंदिरा उनके भाई चंदन भाभी प्रिया और सलोनी सलोनी के पति सब चिंदाराम परिवार के नाम रंभा जी स्विट्जरलैंड में है उनकी बेटियां पति के नाम और सब जानकी परिवार जो गुडलैंड में इस समय हमें सुन रहे बहुत प्यार के साथ कौतवाल से सब दुकान परिवार के नाम जाएगा अगला गाना ये गीत हम चला रहे हैं गिबे दिखे और के सब रसिक परिवार के नाम तेरा रंग बल्ले बल्ले

जिगर में भरी आग है जी हां सुनिधि चौहान सुखविंदर सिंह नचिकेत चक्रवर्ती और क्लिंटन करेजो बी की आवाजों में अभी आप सुन रहे बीरी चरई बीपिया इस गीत के साथ ही दिलों की आवाज ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी दर का प्रोग्राम रत्न पदारत जी के साथ रात के 11 बजे तक शाम के 5 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया टिकटॉक पेज पर आपने हमें फॉलो किया हमें देखा हमारे सभी व्यूअर्स को हमारे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3 बजे से 4 बजे तक रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है सो मिलते हैं कल शाम के 3 बजे संडे

26 जुलाई को शाम के 3 से 4 बजे ऐसा भी होता है कार्यक्रम ऑन रेडियो मनोरंजन. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस. नमस्ते.

0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Yo, hello. Testing 1 2.
3: Yeah. कभी सोचा है
4: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस।
4: डोंट मिस इट।
5: भोजपुरी तड़का।
6: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
5: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। चला रात के 9:03 हो गल बा और 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे आप सब कोई के बहुते पसंदीदा कार्यक्रम हो। तो चला आज के कार्यक्रम में आप सब कोई के साथ देवत हाय और रत्ना आप सब कोई संगे जुड़ गल हवन अभी से लेके रात के 11 बजे रे रहब सब कोई के पसंदीदा गीत चलावे खातिर। आउरी जे तोहर मन में कोनो गीत बजाता

जे तोरा मन करता कोनो गीत सुने के और जे तोहर हिया बा कोनो ऐसन खास मौका जन्मदिन रही काहे का और जे तोरा मन में रही कोनो खातिर एगो गीत डेडिकेट करे के और संगे संगे जे तू हल्दी में गल हुआ और परिवार खातिर एगो गीत मांगे की खोजत हुआ तो जरूर हमनी के टेलीफोन करे सकब 4028085 हाँ हो 4028085 और संगे संगे जे मिसाज विदा करे खोजत हुआ तो 5251705 सेकंदे सेकंदें स्वसंजी से हो सैक तो चला हाली हाली जुड़ जाइया हमर संगे और ये ऐसन ठंडा करता तो मोल तो तरे ढूक के तनी गर्मा गर्म काफी पीते पीते आरी ने तो चाय पीते पीते और ये आजकल तो बहुत कोई लोग ग्रीन टी पिएला तो चला सेहत के ध्यान रखिया और ये मजेदार गीत संगे जुड़ जाइया भोजपुरी दल का कार्यक्रम रत्ना संगे और चला शुरू करब जा आज के है पहला गीत और जो पहला गीत है भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज एल्बम से लेवल गए

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जलसा के संगे जुड़ गल हवन हमन हमनी के सब कोई श्रोता लोगन और हाईजा पर रेहाना साथ देवत हवन हमनी के फेनिक्स बगल से। तो चला मिसाज तू विदा करे सकबा सेकंडे सेकोतियन स्वासंजी जेहो सेक पर और टेलीफोने करे सकबा 4028085 पर। तो चला आगे बढ़ब जा और हमनी के संगे जुड़ गल हवन छोटी पोनलौ जे से साथ देवत हवन और भाई आत्मा राम जे तनी मलाद हो गल हवन अभी लोपिताल में हवन पर भोजपुरी तड़का के वो बहुते खुशी रहेलन। तो चला अगला गीत करब जा उनकर खातिन और छोटी घाई गीत मंगले हवन दीदी ललिता खातिन जे त्रियोले से हमनी के हमेशा साथ देवेलन दादी प्रभावती और हरीश भैया खातिन जे बुबासे से साथ देवेलन। तो चला साथ देते रहिए बसंत सुपोल के आवाज में रखल अगला गीत करब जा इन सब कोई खातिन और साथ देते खुशियाली के साथ आगे बढ़ब जा चचा चाची के किस्सा। जाने ल है महंगा के जमाना में चाची कौन ची बोले हमर चचा के बहुत परेशान करे ला हमनी के हमर चचा के बोले अहो सुना था वो जे तू हमनी के गो हीरा के हार लेके देबा तो हम तोहरा वादा करत हैं तोहर से सात जन्म ले प्यार करब। तो चचा भाली से फट से बोले देख तोरा हीरा के हार खाली नहीं हीरा के कंगन भी लेके देवब लेकिन हाई जोन प्यार व्यार के बात है ना हाई ये जन्म ले रखिया सात जन्म ले हमनी के बहुत पाशांस नहीं बा।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चल सब कोई आतान करता कि चचा गजोधर कौन कांड करता हुआ हाँ बताओ अब तो अभी थोड़ा घरी में और ही चला अगला गीत जो ना है बढ़िया सन गीत बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत और मजेदार गीत के बाद सुनब जाएगो और ही बढ़िया गीत और अगला जो गीत है रिहाना हमनी के बोले तनी बड़ की मसाला पिसेला है गीत वह हमार खातिन चला द हो काहे नहीं होई है ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म मसाला और चाय के मसाला तनी चाय में डाल के पिए के नहीं हो हौ काही के मसाला चाय में नहीं दलिया चाय के मसाला दूसर रहेला इलाई

अच्छी होला गर्मा गरम चाय पिए के, बहुत मजा लगेला ठंडा के मौसम में तनी गर्मा गरम चाय के चुस्की मारते मारते भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आनंद लिया जा। और 11 बजे ले सब कोई के साथ देव अब जाता चला हाइजा पर 9:19 हो गल बा। और का बोलब चाचा गजोधर के कमाल चला रिहाना जी है गीतवा तोहर खातिन जरूर चलाओ अब जा। कृष हृदय के आवाज में रखल है अगला गीत तोहर खातिन तोहर सब परिवार खातिन। और जाने ल चचा त खिसिया गल नय किन के देलंग हरवा त चाची तनी मलाद मलाद हो गल त कोन दिन लोपिताल गल रहल चाची त जैसे लोपिताल से आल त चचा बोले हाँ कौन सी बोलन दोक्तियावा बोले हाँ दोक्तिया बोल देले बा हमनी के पथरी हो गल बा हमनी के लेगे में तनी पिया हो गल बा बोले अरे कैसे बोले याद बा उ दिन तोरा हम बोलले रहली हमर खातिन हार किन दिया जब तू नहीं किन के देलक तो हम अपन दिल पे पत्थर रख लेनी बुझाता है पत्थर घिसक घसक के घसक घसक के हमर लेगे में ढुक गल है ऐसे हमनी के पथरी हो गल बोले बैल बुद्धि पथरी ऐसे नहीं होला हो पानी पिए के चाहिला जस्ती तू हमर कपार पियत हवा हमर खून पियत हवा है ऐसे तोहरा पथरी हो गल बा।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में फेरों से आप सबको एक स्वागत बा और ही लाजवाब गीत संगे आप सबको हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवा बहुत बहुत धन्यवाद है जापर सुदेवी जी हमनी के साथ जुड़ गल हवन वाकवा बगल से और वाकवा देने से हमनी के बोले है एगो बढ़िया गीत चला दा हमार खास कर दीदी ललिता खातिन जे कुशल परिवार से हवन थ्रियोले भाई आत्माराम दीदी सुनीता शोभा देवीना माला और मालेंगा से हवन सब राम रतन परिवार और ऊ गीत के मांग कर ले हवन बैगन बागी में कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में तो चला है चलाओ अब जा हाई बढ़िया संगीत तोहर खातिन और हाई जा पर सुनीता जी भी हमनी के साथ देवत हवन गाँव गो बगल से उनकर चार गो बहिन विमला जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन कोंगो माँ से बहिन अमृता हवन गाँव गोब से और गुडलैंड बगल से हवन वीना जी और गाँव गोब से सुनीता जी हमनी के साथ देवत हवन तो चला है बढ़िया गीत तोहरों खातिन भी चलावत है और हैजा पर मेविन बगल से मेविन ने एगो बढ़िया संगीत के मांग कर हवन उनकर खास संगतिया जानवी खातिन जे बुनतिया से हमनी के अभी सुनत हवन तो चला जानवी जी तोहर खातिन है बढ़िया गीत चलावत है और आज तो सामदी के रात है जलसा के रात है तो मजेदार गीत संगे कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में रखल है गीत तोहर खातिन करब जा औरी जाने ल हमर जोन चचा ह ओकरा जाबे धर ले ले बा और इसल में कोई के बात नहीं सुनेला कौन दिन दोक्तिया हिया गल तो दोक्तिया बोले हाँ चचा जी कितना मीठा खात हो है देखा तोरा जाबे हो गल बा बोले कितना मीठा खाला बोला था बोले कुछो नहीं दिन में दू गो लड्डू हम खा ले ला बड़का लड्डू हमर बुढ़िया बनावेलन सब बहुत मजेदार लड्डू बस खाली एगो फजीर के और एगो सांझ के बोले चचा जी है अच्छा नहीं है तोहर खातिन इतना मिठाई नहीं खाई के इतना बड़का बड़का लड्डू काहे खाता हुआ बोले चला माफ कर दिया डॉक्टर जी बड़का लड्डू नहीं खाब दूगो छोटा छोटा लड्डू खाब उतना तो ठीक बा ना उतना तो पेमिशन दे दिया हमें के बोले अरे बड़का लड्डू नहीं खाई के मना करत है तू बोला था दूगो छोटा लड्डू खेब तो पारे नहीं होगल कैसे समझाव हो चचा

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बिजमावती संपत की आवाज में रखल हाई गीत अभी हम सुन ली जा और चला आगे बढ़ब सा एगो बढ़िया गीत चाची ललिता कुशल खातिन चलाओ अब जा त्रियोले से वो हमनी के सुनत हवन और अगला गीत जोन है उनकर सब कोई बहिन लोग सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन दीदी छोटी दादी प्रभावती साथ हवन भाई आत्मा राम और भाई हरीश खातिन माला राम जावन और सुखलाल मौसी और संगे हवन आज उनकर तीन गो नातिन आयुषी आलिया आलीना तो चला चलाओ अब जा है तीन गो गुड़िया खातिर बढ़िया सा गीत और संभावती दुमन के आवाज में रखल है गीत चाची ललिता पसंद कर ले हवन तो जरूर चलाओ अब जा है अगला गीत औरी जाने ल हमर चचा के त जब कबो बोले लन सका जानी हमनी के बोले जाने ल है दुनिया में सबसे बड़का जादू कौन है कौन ची कौन कौन कौन जादू सबसे बड़ा जादू है हम बोली नहीं चाचा हम जब छोटा रही तब एगो जादू के शो देखले रही हाँ ऐसे पकड़ के आँख में पट्टी बांध के ऐसे कूतो फेंके का जनी कैसे उकरा तो तन को लौके नहीं और ऐसे ऐसे जादू हम देखले बोले नहीं हो है तो सब कोई देखले बा एकर से भी बड़का जादू हम बोले नहीं चाचा तू तो सबसे ज्ञानी आदमी हवा तू ही बता दे हमनी के बोले सबसे बड़का जादू चलेला ब्यूटी पार्लर में एगो करिया औरत चल जाई हो जा एगो करिया महिला ढुकी हो जा पर तो कैसे गोरा गोरा अप्सरा बन के निकली ऐ हो जादू और जब रात के मान ल एगो दुलिन के पारे कर देले हवन औरी दुलन दुलिन सूते के आगे जब अपन चेहरा जाके धोई तो ओकर आदमी के दिल पे कौन ची गुजरी कबो सोच ले हवा हार्ट अटैक से मर जाए आदमी का हो चाचा डिड़ावत हवा सब कोई के

चला 9:42 हो गलवा और मजेदार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और बढ़िया बढ़िया गीत जे तू चुन के अनले हवा हमर खातिन और हम तो चलावत है हैजा पर नाचत है तनी थपरी बजावत है तोहर संगे संगे और चला हैजा पर हमनी के प्यारी चाची शांता सुकाही भी जुड़ गल हवन से जमिल फॉरेस्ट साइड से उस साथ देवत हवन और वो भी बहुत खुशी हवन भोजपुरी गीत सुने के और बोले से जमिल फॉरेस्ट साइड तब बुझाला को मजा कैसे बोलबा पोल नो हो गल बा इतना ठंडा इतना पानी बरसे हो जा तनी तोप ताप के रहिय तनी सोसे और तनी पोलो डाल के रहिय काहे के ऐसन मौसम में खोकी धरे के देरी नहीं लगेला हो और अदरक के चाय पीते रहिय। तो चला आज के कार्यक्रम में हमनी के चाची बोले विनोद सिउदत के हौ गीतवा तनी चला द संगत कर जान के जरूर चलावब जा चाची विनोद सिउदत के आवाज में रखल है अगला गीत तोहर खातिन चलावत है और है गीत तोहर पतो किरण खातिन तोहर चार गो बेटा सुदेश गाविन सुजीत और आशोक खातिन और नाती हवन भावेश नातिन संजना और सब सुकागी परिवार खातिन और जाने ला है लागरिप के पिकिया कराई खातिन हमर जुन चाची है का बोलब इतना बड़का बड़का पालतो डाल देले बात कैसे कहाँ से पिकिया करी। तो कौन दिन चाचा के बोले हाँ हम जाब एगो नवा लुगा किने तो दुकान में जाके हाउ आदमी के बोले भैया एगो बढ़िया हमनी के चोली बतावा अरे नहीं तो एगो अच्छा सन कुर्ती बतावा जे किमोनो बा। तो दुकानदार बोले चाची कौन कौन लोकाजियों खातिन एगो फियोसाई बा या शादी बा या चौथारी खातिन। बोले ना हो बुड़बक

हमनी के पिकिया कराई के बा हइए खातिन। अब बोला था चाची पिकिया कराई खातिन नवा लुगा किनत के समझाई है बुढ़िया की।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आगे बढ़ब सा। और अगला जोन गीत है गायत्री जी खातिन चलाओ अब जा है गीत लागी ना ही छूटे राम नुवेल फॉन्स से उस साथ देवत हवन अमनी के बेटा आ जाए हवन मामी कल्याणी मोहन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोताई लोंग से और खास सखी गीता बाई खातिन जे हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देते रहे लन। और चाचा कौन दिन चल गल शिवाला अब शिवाला में पूजा करत हवन अब पूजा करते करते करते करते का जनी ओकर कपार में कहां से ऐसन सवाल चला।

तो हौजा जोन पंडित जी रहल, पंडित जी से बोले पंडित जी एगो मन में बहुत एगो सवाल आवता। तो पंडित जी बोले हाँ चाचा जी, बोला कौन सवाल आवता? बोले जाने ला पंडित जी, आज तो दुनिया भर में जहाँ देख बा महिला लोग बहुत काम करेलन, बहुत आगे बढ़ गल, और जोन पहला पुरुष काम करत रहलन वो काम आज महिला भी करता। अभी जैसे कोंथ ले के काम करा था, सोफिया बीस के काम करा था, लाबोंक में काम करा था, अरे है का लोपिताल में काम करा था, दोक्तिया के काम करा था, और चांद पर चल गल हवन हो, आवियों सब चलावा था। तो पंडित जी तनी खिसिया गल, पंडित जी बोले कौन सवाल है, सवाल बोला, फजेरे फजेरे हमर कपार नहीं खाली करा। बोले तो हाँ ये पूछा था ही पंडित जी कि आज ले मंदिर में पंडित के काम काहे महिला नहीं करेला। बोले ओ बुड़बक, जब पंडित के काम महिला करी तो आदमी लोग भगवान के नहीं खाली पंडित के देखी, समझ गए ला? हाँ ये खातिर तेहर तोहर नियर बेफजूल के सवाल करते रही पुनारिये के। पूजा में ध्यान लगावा, अरे गीत ही सुना, गीत सुना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलन 9:54 हो गल बा और ये भी पीती मामा में 10 बज जाए और ये जरूर कार्यक्रम तो जारी रही रात के 11 बजे ले तक चला हिजा पर हमने के साथ देवत हवन फुलवंती जी बाकवा बगल से और उनका पति हवन देवानंद बेटी उभावना बेटा उषा नीता जी भी हमने के संगे जुड़ गल हवन सेंट जूलिया विलास बगल से बोले हरदी से आवत हई और प्रोग्राम में भाग लेवत हई बहुत अच्छा कार्यक्रम चला साथ देते रहिए जा प्यार से और स्वादिका जी तो खास

दिविलन और सब खेदनी परिवार खाती नाम जोड़त है। और अगला गीत जो है भाई आबू के पसंद पर चलाओ अब जा भाई आबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर भगिनी हवन रकीबा जे तनी उनका तबीयत तनी अच्छा नहीं बा और बिल्कुल चला दुआ कर अब जा उनकर खातिन और उनकर खास संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और खाला छोटी खातिन। अगला गीत चलाओ अब जा विक्रम कुलाचन के आवाज में धोती पोथी पगड़ी और ही जो हमर चचा हवन शिवाला जाके पंडित जी से हमेशा अपन दुखड़ा रोईते रहेला तो जाने ल बाबा जी कौन ची बोले अच्छा बतावा तोरा कौन ची चाही तो चचा बोले पैसा तला दे बोले पैसा के बाजू में रखा पहला हाई बोला तोरा कौन ची चाही तो चचा बोले बाजू में रखल पैसा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: Testing one, two. Yeah.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: भोजपुरी तड़का।

हमनी के साथ देवा धवन साजिद जी रोजिल बगल से और आज बहुत ही खुशी हवन एगो बढ़िया गीत सुने के उनकर खास संगत या हवन दीना सरोवर जे विदेश से हमनी के साथ देवत हवन और कुणाल बाबूलाल के हये गीत करब जा भाई माहिन खातिन जे हमनी के संगे साथ देवत हवन और उनकर सब जगमोहन परिवार खातिन और भोजपुरी गीत के जो प्रेमी हवन उन सब कोई खातिन हये गीत करब जा खासकर दीदी मान खातिन तो चला बस प्यार से साथ देते रहिए जा सुनते रहिए जा औरी का बोल अब ठंडा जितना करता औरी जाने ला हमर जोन पप्पू भैया हा एगो ऐसन आदत लगल बा ओकरा धूम्रपान करे के सिगारेट जितना पिएला तो ओकरा दोखतिया हियां लेके गल चाचा अब जब दोखतिया हियां लेके गल तो चाचा बोले दोखतिया ओकरा बोले कि देखा ओकरा योगा करैया योगा अच्छा बा फजीर के उठ के ओकरा तनी योगा करैया और जाने ला हो रामदेव जी के शिविर फजीरे फजीरे टेलीविजन में मिलेला जहाँ पर बतलावेला कैसे योगा करे के और एक महीना तो इतना निमन से योगा करलन पप्पू भैया जाने ला नहीं हो कहाँ सिगारेट छोड़क पहला तो हाथ से सिगारेट पियत रहलन अब जब से योगा करता टंगड़ी उठा के अपन टांग से सिगारेट फूके के शुरू कर देलक बोला था हमनी के बतलावे अपन टंगड़ी टंगड़ी में सिगारेट ढुका के फूके लन सब कैसे समझावा पप्पू भैया के

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:10 और मजेदार गीत के संगे चला है। जहाँ पर जन्मदिन मनाई मनयन रानीश जी और 27 तारीख के ओकर जन्मदिन बा यानी लेंदी के वो अपन जन्मदिन मनयन और उनकर पत्नी हवन अनुषा संगे हवन दूगो बेटी मितिशा और गिरीशा और साथ देवत हवन उनकर बेटा हितांशु भैया हवन निवेश और पत्नी हवन उर्वशी और दूगो लयिका पुष्कल और भव्या और पुपू मानती उनकरा बहुत बहुत प्यार से आशीर्वाद देवत हवन पापा आनंद हवन और पुपू अनंती और पुपू आरती के ओर से रानीश जी के बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई देवत हवन। और चला अगला गीत हमार थीम देने से तोहर खातिन चलाव अब जा और हई गीत हा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई तोरा बोलब जा और बस जन्मदिन जब आवेला त एगो बहुत खास अवसर हो जाला और बस सब कोई आशीर्वाद देवेला त हम भी हये बोलब जा तू हमेशा स्वस्थ रहिय खुश रहिय अपन परिवार के संगे निमन से जीवन बितैया और हई गीत हमारी टीम देने से तो है।

0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन माहिन जी और साथ है जा पर राजन जी भी हमनी के साथ देवत हवन राजन लक्ष्मण लाफलोगा से उस संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जो है चलाओ अब जाओ उनकर प्यारी पत्नी माला दूगो बेटी हवन प्रार्थना और प्रगति बहिन मानती और संगे हवन उनकर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिन और सब लक्ष्मण परिवार जी हमने के अभी साथ देवत हवन हंसते मुस्कुराते बस जुड़ल रही अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जातो हर खातिन और का बोला हमर जोन चचा है ऐसे उदास कौन दिन ऐसे कपार पे हाथ रख के तेरास पर बैठल रहल त हम बोली कौन जी होल चाचा काहे ऐसन मुँह लटका के बैठल हव बोले हाँ जीवन भर हम एक गो सपना देखले रहली हम बोली कौन सपना बोले एगो दिन जाके पहाड़ी में घूमब एगो हौ हिमालय चल जाब तनी लानेश देखब तनी घूमब पर जैसन हालात हो गल बा बुझाता जाके पहाड़ी के जा ऊपर जाके कूद जाब कूद जाए के मन करता बोली काहे ऐसन बोलब बोले बहुत महंगाई बढ़ गल बा कहाँ जाब हम पहाड़ी में घूमे बुझाता पहाड़ी के ऊपर जाके कूदे के और जान दे के का हो चाचा ऐसन बात करत हुआ देखा चल जाइए तनी क्योंपी बगल चल जाई जा हौजा पर जितना ठंडा करता ना थोड़ा बुझाई जैसे लानेज चलता चला देखा हाई बहुत मजेदार गीत चलता हाई सुना हो। अरे

0: भोजपुरी तड़का
1: मजेदार कार्यक्रम 10:22 हो गलबा और हईजा पर रतन भैया हमनी के संगे जुड़ गल हवन गांव बे बगल से उनकर पत्नी हवन करुणा और सब परिवार संगे वो हमनी के साथ देवत हवन त चला करुणा हमनी के बोले बीच सीमा में हई गीत तनी उनकर खातिन चला द और हई गीत है गणेशन हरि के आवाज में और पप्पू भैया के का बोला पप्पू भैया कौन दिन लाबोंक में मैनेजर के जाके बोले ओकरा मन बा जॉइंट अकाउंट खोले के तब बैंक मैनेजर बोले अच्छा बात है तो केकर संगी खोलबा बोले हाँ जोन मर्जी जेकर जेकर अकाउंट में जस्ती से जस्ती पैसा रही ओकर ओकर अकाउंट में हमर नाम भी संगे जोड़ द बोले अरे बुढ़बा कैसे नहीं होला जॉइंट अकाउंट हो तो हर परिवार के कोनो व्यक्ति रही तो दोनों जन संगे मिलके जॉइंट अकाउंट खोले सकबा ऐसे कोई कोई के भी अकाउंट में तोहर नाम नहीं जोड़े सकबा बुढ़बक आदमी

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर लागे ना ही छूटे राम के एगो बढ़िया गीत है और है गीत जो है श्यामा जी के मांग पर चलावत हैं। श्यामा रघुनंदन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन खोंगो बगल से उनकर सब परिवार रघुनंदन परिवार खातिर भैया हवन जय प्रकाश भौजी नम्रता केशव और युधीश और साथ देवत हवन उनकर खास सखी वीना रामफल और विश्वानी जी तो चला चलाओ अब जा है अगला गीत उनकर खातिन खास करके

0: नाच भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाग बगल से हमनी के साथ दिवत हवन और उनकर पति हवन राज, बेटा आंतिश और साथ अंग हवन अंकुश, पतो हवन मनीषा और अशीमा और उनकर नातिन हवन हिमेश और आध्या, नाती हवन आंच और सब रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टीम खातिन अगला गीत के मांग करत हवन। सोना नोयन के आवाज़ में रखल है अगला गीत, जरूर चलाओ अब जाओ उनकर खातिन, उनकर सब परिवार खातिन। और ये हमनी के पप्पू भैया ता अधा बुड़बक के बुड़बक हवन, काहे के जाने ल हमनी के बोले आज टू यू के बर्थडे है, टू यू भैडा भैया जोन है ओकर जन्मदिन है। हम बोले कौन टू यू, बोले हाँ वो जोन हमर पड़ोस में रहेलन सर टू यू भैया। बोले हाई कौन कलिते के नाम है, बोले हाँ हम सुनले हाई सब कोई ओकरा बोला था हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम बोलने अरे बुड़बक पप्पू भैया का बोला था वह टू यू मन मतलब उनकरा सब कोई हैप्पी बर्थडे बोला था हाई ये से ओकरा टू यू बोला था, टू यू ओकर नाम नहीं हो। बोले अच्छा हम तो सोच ली टू यू ओकर नाम है। पप्पू भैया हाई से तो कब से बोला था तनी लेकोल जाइया, तनी पढ़िया, तनी शिक्षा ग्रहण करिया हो, तोहर नाम बहुत चुन के रख दिले हवन कोई नो।
2: दुनिया

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत मजेदार कार्यक्रम और चला है जहाँ पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन सब नेमन परिवार वैष्णवा बगल से खासकर धनंजय नेमन जी हवन उनकर पत्नी नीला और साथ हवन उनकर बेटा नवीन पतो हवन पूनम बेटी हवन सुनीता और सब नाती पोती उनकर नातिन हवन कृषि नातिन अन्ना नाती

हवन कृषि और नातिन हवन कीर्ति। तो चल अगला गीत मांग कर ले होवन। सुना नोयन और बसंत सुपल की आवाज में रखल है लाखोश। चला है ये लाखोश निमन परिवार खातिन जे खुशनुआ बगल से हमनी के साथ देवत हवन उनकर खातिन चलाओ अब जा।

सुनो, बस तू ऐसे काम करो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समाप्त करेंगे समय हो गलबा रात के 10:55 और आज के कार्यक्रम के है आखिरी गीत नीरज गुप्त मधु और हाँ ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम के हाई चाप पर फुल स्टॉप लगाओ अब सर। तो चलो आशा कर अब सर कि आज के हाई कार्यक्रम तोरा बहुत अच्छा बुझा और जीवन में हमेशा

फेरों से साथ देव अब जाएगो और बढ़िया कार्यक्रम संगे आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले। उसे तो देख बतर रोज रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलते रहेला और तोहर मनोरंजन रोज रात के रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन के साथ साथ रेडियो मॉरिशस पर भी होते रहेला। तो हम तोहर से भेंट करब आवत सामदी के। चले एकर संगे अपन पूरा ख्याल रखिया, हंसते रहिया, मुस्कुराते रहिया और रत्ना के अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि सबको के। चला हमर बात आवता नीतुषा सुनहरे पल कार्यक्रम के लेके रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच उनका प्यार से साथ दीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आप सबका हार्दिक अभिवादन स्वागत है श्रोताओं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वीकार करें नितोषा का कर जोड़ प्रणाम। आज किन के बारे में बात करेंगे, किन की दुनिया में आपको ले चलेंगे, बहुत बड़े फैन हैं आप इनके। इनका नाम है देव आनंद। जितने भी गाने, जितने भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है वो सब अविस्मरणीय एवरग्रीन है। इसीलिए आज की इस रात को और खूबसूरत बनाते हुए यादों की दुनिया में एक बार फिर आपको ले चले हैं।

का प्रतीक है जहां स्टाइल रोमांस ऑप्टिमिज्म और इंटेलेक्चुअल चार्म एक साथ स्क्रीन पर जिंदा होते थे। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म शकरगढ़ अब पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारा के बाद उनका परिवार भारत आ गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई।

देवानंद ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में की। शुरुआत में उनका सपना फिल्म से जुड़ा नहीं था, लेकिन बॉम्बे आने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने पहले मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम किया, लेकिन सिनेमा का जुनून उन्हें स्क्रीन की तरफ खींच लाया।

1946 में फिल्म हम एक है से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1948 की फिल्म जिद्दी से। इस फिल्म की सफलता के बाद देवानंद का करियर उड़ान भरने लगा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक, चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट और आवाज में यूथफुलनेस थी।

आनंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नव केतन फिल्म्स की स्थापना की। यहीं से हिंदी सिनेमा को मिले कुछ यादगार और बोल्ड फिल्म्स, बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, गाइड, जुवल थीफ, जॉनी मेरा नाम। ये सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर्स भी थी। 1965 की फिल्म गाइड देवानंद के करियर का शिखर मानी जाती है। राजू गाइड का किरदार उनकी एक्टिंग का बेहतरीन उदाहरण है। एक फ्लोट इंसान जो अपनी गलतियों से सीखता है। ये रोल उनके एक्टिंग रेंज को पूरी तरह दर्शाता है।

डायलॉग डिलीवरी में फ्लो, हमेशा चलती हुई बॉडी लैंग्वेज, आंखों से रोमांस और कॉन्फिडेंस। उन्होंने कभी ड्रामेटिक ओवर एक्टिंग नहीं की, उनका चार्म नेचुरल था। वो हीरो होने की दावा नहीं करते थे, वो बस हीरो लगते थे।

देवानंद अपने दौर के सबसे बड़े स्टाइल आइकॉन्स में से एक थे। स्कार्फ को गले में लपेटना, जैकेट और कैप का अंदाज, साइड प्रोफाइल में कैमरा से बात करना। कहा जाता है कि उनके नेक मूवमेंट और स्कर्व स्टाइल की वजह से एक समय उन पर क्लोजअप शॉट्स लेने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि लड़कियां उन पर दीवानी हो जाती थी।

देव आनंद ने स्क्रीन पर रोमांस को क्लासी और रिस्पेक्टेबल बनाया। उनकी जोड़ी सुरैया, वहीदा रहमान, कल्पना कार्तिक, साधना, आशा पारेख जैसी एक्ट्रेसेस के साथ बेहद मशहूर थी। उनका प्यार हमेशा आंखों और मुस्कुराहट से बयां होता था।

वैसे देवानंद सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि डायरेक्टर और राइटर भी थे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की और लिखी जिनमें सोशल इश्यूज, यूथ प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल थॉट्स भी शामिल थे। उन्होंने हमेशा नए लोगों को मौका दिया, चाहे वो गुरुदत्त, आरजी बर्मन, किशोर कुमार या जीना तमान हो। देवानंद जिंदगी भर पॉजिटिव रहे। बुढ़ापे में भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि जब तक सपने जिंदा हैं, तब तक जिंदगी जिंदा है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे सम्मान मिले। 3 दिसंबर 2011 को लंदन

में उनका निधन हुआ, लेकिन देवानंद कभी गया ही नहीं। वो अपनी फिल्मों, गीतों और अंदाज के जरिए आज भी जिंदा है। वे हिंदी सिनेमा के वो सितारे हैं जो कभी फेड नहीं हुए। उनकी फिल्में देखकर आज भी लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है, प्यार सच्चा हो सकता है और सपने पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि देवानंद नाम ही काफी है, स्टाइल

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका भी

يا خلاق، وصل على عبدك وحبيبك محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر